नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता

0: दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रूपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

यीशुने चिंतन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, हम आजादी तभी पाते हैं जब अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। भक्ति संगीत।

सभी चरणों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान सुनवाया जाएगा, आज भाग 281। सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार है गायिका शुभा मुद्गल। आज इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी सुनवाई जाएगी, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से किया जाएगा। 8:15 पर

त्रिवेणी दोबारा आप दिन में 2 बजे सुन सकते हैं। 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो स्वतंत्रता दिवस पर हमारी विशेष पेशकश है। आपको बता दें ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, कहानी अब गम नहीं, इसे लिखा है अलका अग्रवाल सिगतिया ने और प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है। दिन में 11 बजे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला का विशेष भाग प्रसारित किया जाएगा। संकलन संपादन

दन जयंत पात्रीकर प्रस्तुति अनुश्री पाठक सुबह 12:05 पर यादों की महफिल 1 बजे सुरीला सफर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनके बारे में आपको बता दें सुबह 8 बजे समाचार प्रभात दिन में 12 बजे हिंदी समाचार शाम 6 बजे हिंदी समाचार और उसके बाद रात 8:45 पर समाचार संध्या नाट्य तरंग के अंतर्गत आज नाटक सुनवाया जाएगा लगन रोमी शिराज ने इसे लिखा है निर्देशक मुद्रा राक्षस दिन में 2:30 पर सदाबहार नक में कार्यक्रम 3 बजे मंच आएगी 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा भाग प्रस्तुति जुबैर खान की है 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा संध्या रंजन 6:35 पर 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने प्रस्तुति तेजश्री कांबले की 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा कार्यक्रम आप सुनेंगे यूनुस खान के साथ इस कार्यक्रम में आज है तिरंगे की कहानी हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला में पंच परमेश्वर कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की है वाचक अमरकांत दुबे प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए 10 बजे सुनिएगा छाया गीत 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम विशेष एपिसोड आज दिन भर के कार्यक्रमों का ब्यौरा अभी आपने सुना चरों का भी सुनते रहिए विविध भारती देश की सुरीली

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त? पवनसुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये लोक संगीत में, लोक शैली में लोक गायक भी झूला गाते रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और शायद वो लोक गायकों की ओर से मंदिरों की तरफ गया है या वहां से यहाँ आया है,
1: ये कहना तो संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ इतिहास पता नहीं चलता। मंदिर गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, तो किसने किससे क्या लिया ये कहना मुश्किल होता। और अब तो ये भी होता है कि जो पहले मंदिरों में सेवा करते थे उन्हीं से सुन के या उन्हीं उसी परंपरा से शास्त्रीय कलाकार भी गाते हैं या लोक संगीत से प्रेरित होके, प्रेरणा लेके भी कुछ परिवर्तन करके भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले जो गुणीजन है वो प्रस्तुति करते हैं।
0: लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मिले हुए, एक दूसरे का रंग लिए हुए
1: जी, और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी परंपरा पहले आई, किससे किसने क्या लिया, ये कहना जरा कठिन हो जाता है।
0: इसको राग का कुछ बंधन होता है, ये भी लोक धुनें होती हैं या
1: लोक धुनें होती हैं और कई बार पीलू नुमा ऐसे कुछ मिलती हैं जो कि पीलू का कुछ की कुछ कुछ स्वर संगतियां रखती हैं या कुछ याद आती है पीलू की, लेकिन फिर अलग भी हो जाती हैं। एक रचना मुझे याद आ रही है जो मुझे श्रीमती नैना देवी जी से मिली थी, लेकिन वो आपको लोक संगीत के संग्रहों में भी मिलेगी
0: जी।
1: मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी

0: द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जो जिसमें लोक संगीत का एक संग्रह है, ऊंची अटरिया रंग भरी। उसमें कई प्रकार के लोकगीत आपको मिलेंगे और स्वर लिपि के साथ मिलते हैं, उसमें भी ये चीज मिलती है। और नैना जी से तो मैंने, जैसे ठुमरी के अंदाज में गाते हैं वो, मैंने ये चीज सीखी थी। और आमतौर पे कृष्ण कन्हैया से संबंधित बहुत सारा साहित्य मिलता है, लेकिन इसमें कहा गया है धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, तो सीता जी का वर्णन है इसमें
1: जी।
0: और झूले सरजू के तीर पहिरे रेशम के चीर, नागिन बिनिया डुलावे, मतलब जो उनकी वेणी है जो वो बिल्कुल नागिन समान है।
1: हाँ।
0: तो जब झूले पे वो झूठा लेती हैं तो वो नागिन के तरह झूलती भी है उनकी वेणी। झूले अवध बिहारी संग सिया सुकुमारी, झोंका धीरे लगाओ सुकुमारी सिया हो, क्योंकि सुकुमारी है वो, तो ये नहीं कि जोरदार आपने पेंग बढ़ा दी बहुत संभल के धीरे झोंका लगा के सुकुमारी सिया को झुला रहे हैं
1: जी।

0: शुभा जी, ये जो झूला होता है या झूले गाए जाते हैं, ये वर्षा काल में ही गाए जाते हैं, या जैसा आपने कहा कि कजरी के दंगल होते थे, वैसे तो झूले कहाँ और किस समय गाए जाते हैं?
1: ज्यादातर वर्षा ऋतु में तीज के आसपास पड़ते हैं झूले, और उस समय गाए जाते हैं झूले।
0: और इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसके जो गीत हैं उसमें वर्षा ऋतु का ही वर्णन हो, अलग अलग, जैसे अभी सिया सुकुमारी को झूलना है हिंडोले पे, पींग भरनी है, तो कोई और झूला जो ठेठ लोक शैली का?
1: जी, एक झूला मुझे याद आ रहा है, सखियां झूलन चली फूल बगियन घेर आई कारी बदरियाना, और फिर उसमें कैसे श्रृंगार करके जाती हैं, क्योंकि महिलाएं झुंड में जाती हैं, सब लोग इकट्ठे होके झूलने के लिए इकट्ठे साज श्रृंगार करके निकलती हैं। बहुत सरल सी धुन है लेकिन बहुत खूबसूरत, वो आपको सुनाते हैं
0: जी।

0: बहुत आनंद आया। शोभा जी, आज की कड़ी में हम श्रोताओं के साथ यहीं रुकते हैं
1: जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शोभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।

विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण, ये प्रसारण हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: रहता है।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चले।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस।

0: नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुंओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई रहे हैं। यहाँ से
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट

0: पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, आपने अपनी कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा। आपने मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैक के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल है। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक तक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। अपनी सेवा देते हुए आज सुबह

0: बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हील चेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जनेंद्र, मैं देवेंद्र के पास ही आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपको दूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक तीसरी बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गार्ड का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास, और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

நேற்றுக்குமே அப்புறம் சொல்லாமல் भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जी रोड्रिग्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय

वीर सैनिकों के मुख पर विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा मंत्र सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमारी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई हमें भारत के प्रहरी हमें मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का उनके प्रति श्रद्धावनत होने का जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत

0: वीर बलिदानियों का ऋणी है जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी।

0: यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जनेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटकेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम, और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है
1: जी। और जैनेन्द्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थी, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब

अस्ति वा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की

आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी

एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। यानी देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉर्म में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, एक आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फॉर्म के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए,
हर साल 4 गुनी रफ्तार से

गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी

क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो हमने लॉन्च किया बजट में, क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्र तट पे 99% हमारा समुद्र तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किए गए नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए

दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 30-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। बहुत पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया, 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है। और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा।

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी सवालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया

हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया के करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है, लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है, लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरल से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे स्वीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के

सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का, सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के जाना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिर्च हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए,

एयरफोर्स चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट ले डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, कोस्टल टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सर्ट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां वो देश सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं।

एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश आने सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश आने हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो

अरब की धरती पर है और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, तो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2009-10 में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है।
जिसके

और बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत को तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हर का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है।
100 सप्ताह तक अभियान

चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर।

जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस पिछाड़ रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे,

संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेल कूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। तो मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति दे, मैं बताता हूं।

अब बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती है, योजनाएं बनती है, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहां पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी

0: दाहिनी ओर जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की सप्त धारा की, यहीं से पंच प्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों और ये कैडेट्स जो है बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते करते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे

0: यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई

0: जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है गरिमामयी मंच है यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से शत प्रतिशत आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांवों में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत मां की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, मां भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार

0: रशर शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम अलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूं। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम अलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 7 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 7 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत।

0: ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्र तट पे, समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने

0: आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है।

0: इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत, जबकि लोकसत्य ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहद एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए

0: 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for Defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
2: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो

0: सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया।

0: गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत हो। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.

0: धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्तधारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज मईशत और समंदरी मईशत है और सप्तधारा की सातवीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को एआई हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई जहानत के आलमी शोबे में क्यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीजों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले जो एआई इम्पैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: वजीर आजम ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में खसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वीं यौमे आजादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौमे आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादइज़्मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाली इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
3: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आजादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आजादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की 6 सुर्खी है। सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है। युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत
1: सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ धूमधाम से मना रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदान की महान परंपरा को जगाने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया।
3: देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा, अपने सब त्याग और बलिदान आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
2: श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गूंज रहा है, ये देश के लिए उत्तम अवसर है।
3: सबके लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना

0: आ रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: इस बीच प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा भवन के सामने आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल शाम एक बधाई संदेश में कहा कि स्वतंत्रता का ये पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने की अपील की। उधर प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया और विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
2: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
2: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है।
2: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। यह युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विविध आयोजन किए गए। इस दौरान देश के विभाजन की त्रासदी को इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर कल लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्याय में एक है। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।
3: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं।

0: जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इनमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं। मुंबई के घाटकोपर में बारिश के दौरान कल मकान पर पेड़ और पत्थर गिरने से जौनपुर जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार बदलापुर तहसील क्षेत्र के इनामीपुर गांव का रहने वाला था। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार, नमस्कार।

मैं कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की डील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोनी चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत से बातें करने को होने लगा। अचानक उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों

आगे जब बस रुकी हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा परेशान मत हो, मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती मम्मी कहती मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त बहन न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती कथा दी मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती, कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी के जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुलटा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहाँ गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड, मैं नहीं रोऊंगी। क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना हाँ। और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

0: अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा मैं सोल्जर बनके परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ। अरे पापा आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपकी मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई है, मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी। और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ, आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं। हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना। 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको तब काटेंगे। ओके पापा अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू और

0: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू।
1: और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू।

पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए एक गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टो, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिद्दी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिद्दी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है लेकिन हम मनु कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना, हमारी मनु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था तुझे।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी, बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बजता रहता है।

पास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई। डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकालकर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं। शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका आप आगे कुछ कहते, उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे लेकिन अब मानविका बन गई है भाई। वो तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रखकर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। मम्मा ने लाड़ से कहा, पल्ले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई। बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे, भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी, आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा, निशित कैसा है। जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया, पापा मेरा सपना तो ये है अब। मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती, दुखी होती, तो आप कहते, क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूँ, और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते। याद है ना वो गाना।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने उस सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही न चला, मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। एक महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी सभी मानविकाओं पर हमें गर्व है, उनके परिवारों पर गर्व है। उन सभी के परिवारों को एक गाना समर्पित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं, जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम। इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीर्वाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं, केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए, के बोले माँ तुमी अबले, इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले। उसी प्रकार बाहुते तुमी माँ शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे, ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं, और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
0: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।

0: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद किए।
1: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
2: Thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of midnight dreams.
0: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात ये है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
3: My motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar, the smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man scorn, thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou, my song, my worship and my art. Before thy feet I bow, as Durga, scourge of all thy foes, as Lakshmi, bowered in flower that in the water grows, as Vani, wisdom and power, the source of all our might, our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing. The stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing, my motherland.

0: सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसके दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम।

वंदे मातरम। उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म नम हृदय दी नी ने

बड़ौदा के सावरकर अध्येता और युवा लेखक चिरायु पंडित ने मूल वंदे मातरम के समवृत्त में ही गुजराती अनुवाद अभी हाल ही में किया है। गायक जयदीप बेहरे, संगीतकार निखिल पालकर।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेल्डेकर जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुचेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीतलहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बीनी माधव, क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृ वंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये गीत है।

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक गान नथी आ शान बान अने आन आपणी, आजादीना महायज्ञनी आहुति आ, राष्ट्रभक्तिनी आहले का, गणतंत्रना उरतंत्रनो महामंत्र आ, विकासनी आ सतत धबकती अननम ओळख रहे आपणी, 1857 नो प्रकाश पुंज आ, सत्य काजे रत्नो अभिषेक अविरत, वंदे मातरम ए शब्द नहीं आ मंत्र आपणो, आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपणो, विकासनो आ राजमार्ग छे, संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे, प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे, वंदे मातरम। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी और यूनुस खान। अंग्रेजी, उर्दू और तमिल अनुवादों के रिकॉर्डिंग स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जन गर्जय इस एल्बम से साभार। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ अनुवादों के संगीतकार अजय पराड़, हिंदी अनुवाद के गायक भाग्यश्री अभ्यंकर, मानसी दीक्षित, ऋषिकेश केलकर और धनंजय पवार, तेलुगु अनुवाद गायिका अपर्णा केलकर, कन्नड़ अनुवाद गायिका अनुष्का आपटे, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल और समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छ।

पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश

0: शंकर जयकिशन की तर्ज थी, शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, मुकेश की आवाज में फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डर।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में नीरज की रचना थी सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राज्याध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

नजर को झुका के ही।

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

डगमग डगमग नैया डोले रिम जिम बादल बरसे रामा हो गुन गुन गुन गुन भौरे झूमे झर झर झर झर झरने झूम

जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल

देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो

इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।

0: कामगार दो कदम तिरंगा उछाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं दूर किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
1: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी श्रोताओ और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 留学करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा.
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों.
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान.
5: मैं अगले दिन आशुतोष शुक्रवार फिर से मिलने गया. उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे. रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल. नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है. तो मतलब काफी वेरिएशन थी.
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय कहा.
6: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर. यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ पलों में.

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। माँ भारती को परतंत्रता की

दिलों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बाने से सजे तिरंगे की शान चौकट को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं माँ भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आजादी के रंग का गुलाल है साथियों जो आज सबके मुख पर है। यकीन न हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है आपके आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशीन तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है, ओढ़ कर धानी चुनर सजा कर आजादी की मेहंदी जैसे दुल्हन चली। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये तो फल और फूल उगाए केसर का।

हंसराज बहल की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की ये रचना आपने सुनी सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओं, इस गीत में आपने देखा होगा कि दो कलाकार नजर आते हैं रथ पर, ये कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। स्वतंत्रता दिवस की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, देश को भी, हमें भी, और हम भी यहां से तमाम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की यादों की अगर बात करें श्रोताओं, तो जिनसे दिल कभी खाली नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, आज मौका है, कह दीजिए अपने दिल की बात, तिरंगे की।

यादों, स्वतंत्रता दिवस की यादों में आपके दिलों में क्या क्या खजाना आज छुपा है ये आप बता दीजिए, और बचपन की बातें भी, स्कूल की बातें भी जरूर बताइएगा, और साथ ही आजादी के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या हैं ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, 15 अगस्त वो दिन है जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों के बलिदान से तिरंगा आजादी की सांस ले पाया था। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, वो किसी की आंखों का सपना और किसी माँ के बेटे की कुर्बानी। आजादी सिर्फ छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है देश को ईमानदारी, एकता और मेहनत से आगे बढ़ाने की। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ मान रखते हैं उन सभी शहीदों का और हर कर्म में जिन्हें हमें जिंदा रखना है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज हमारी हवाओं में जो स्वतंत्रता है वो हमारे वीरों के बलिदान की सुगंध है। जब चारों ओर दिशाओं से वंदे मातरम की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति उन वीर सपूतों की आरती उतार रही है। वंदे मातरम की तान लिए चारों दिशाएं डोल रही हैं, वीर सपूतों के शौर्य की गाथाएं खुद बोल रही हैं। मातृभूमि की रक्षा जिन्होंने शीश अपने कटाए, आज झुककर शीश वतन उनके वंदन को आए हैं।

0: मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
1: बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, आनंद मठ फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब में लिखा है कि प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं रथ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। और इस गीत को किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जो अभी हमने आपको आनंद मठ फिल्म का सुनवाया। और आनंद मठ जो है श्रोताओं, ये एक रचना है, इस बारे में अगर आप हमें बताएं तो क्या ही बात है कि किसने लिखी। और एक

0: श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता, एकता और गौरव के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों के बलिदानों से मिली आजादी हम सबके लिए अनमोल वरदान है। एक और श्रोता ने लिखा है सुमधुर सुरीले गीतों और जो आज संदेश हैं वो पढ़े जाएंगे। और एक और श्रोता ने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि दुल्हन चली पहन चली और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो ये सारे गीत ये लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता ने लिखा है कि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है देश के हित के लिए कार्य और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही हम शांति पूर्वक जी सकेंगे। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रेगिस्तान की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात चौकस दृष्टि लिए हुए हमारे वीर जवान चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। उन्हीं के कारण हम सभी भारतवासी सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। आजादी के लिए हमारे कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपको श्रोताओं जो बचपन की यादें हैं वो हमसे आज साझा करनी है, और साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस किस खास अंदाज में आपने मनाया ये भी आप हमसे जरूर बताएं। ये किस फिल्म का गीत है और संगीतकार कौन है?
1: ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग...

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप

सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगी ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं, लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस जज्बा हौसला मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में हैं, बसंती दुल्हन विजय विश्व तिरंगा ब्रह्मा वतन पैगाम तूफान जानो तन और तमाम शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी, सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दी बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

प्रदीप की यह रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार की तर्ज से जागृति फिल्म का यह गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी। ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुई स्पून गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गांव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहां बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे। तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है, ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयां मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूं, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा, नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली पहन चली तीन रंग की चोली और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में।

के साथ आपकी क्या यादें हैं श्रोताओ, आप हमसे बता सकते हैं। क्या ये फिल्म आपने देखी है तो उसकी यादें भी आज आप ताजा कर सकते हैं।

0: भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें जरूर बताएं। और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से लिखा है कि नमन करूं वंदन कर लूं मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती है कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्योहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं। और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओं।
1: करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बा

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोता। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद, क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर फिर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया, उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनो जलेबी जो है वो जगह जगह यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती है ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढाई महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम

0: सर्वोत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिने जाते थे, 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी।
3: अंतर सेवा पुलिस
2: इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80

0: 25वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं।

0: भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बादलों के बादल कैसे छाए रे छाए, कल झूमे रे झूमे मन जाए रे जाए।

0: एन दत्ता की तर्ज, राजा मेहदी अली खां के बोल, आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष द्वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: पगड़ी

0: सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी।
1: गीत और संगीत था प्रेम धवन का, मोहम्मद रफी की आवाज में शहीद फिल्म का गीत आपने सुना।

दीदी फिल्म का ये दुगान आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिल धानवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: मोहब्बत जिंदगी है सुनकर गीत आपने सुना महेंद्र कपूर आशा भोसले का गाया सच बिहारी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।

लीजिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओ रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से

कहा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हो झूठा है ये।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इसी गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन, रूपाली, प्रीति, निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पुरानी सुनना चाहते थे पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का लिखा। श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निकट परवीन, शहनवाज फद्दीन और अफवान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चल्लाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी, संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से अदालत दास, मानसी, शांति, ऋचा गायत्री।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, रिधोरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े, मंगेश की फरमाइश थी, अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी सुमित की फरमाइश थी, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी, और हमारे डब्वाले हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और लै।
1: मतलब
0: कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल बेनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।

0: परिणाम प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें.
1: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग.
0: जितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है?
1: जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट.
0: पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल. बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं. बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये.
1: और उधर
0: जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया.
1: तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो हाँ वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस.
2: हाँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब. मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए. It was not an accident, you know, he was killed.
2: Poor chap. निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था.
0: ये सब बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो.
2: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने.
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ.
2: अब तो सोनाली ने शादी कर ली.
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है. लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई.
2: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके. अरे कौन है बाहर? ए कौन है बाहर? अरे कौन है बाहर? देखे मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
3: अरे हम है बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर.
2: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई. और साथ में कौन है तुम्हारे?
3: चलो यहाँ से चलो. हजूर हमारे घर के ही बच्चे हैं.
2: अरे बाहर जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से.
3: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए.
2: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ. इडियट्स, निकलो बाहर.
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक.
2: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग. अरे देखो तो इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए.
0: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की.
2: करते हो निगम तुम भी, ठंड है तो कहीं और जाए. अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
3: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो चल कहीं और.
2: बताओ भला, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में. वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो. लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेगी. निगम ये क्या बजाने लगे तुम?
0: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
2: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है.
0: शेखर मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने.
2: हाँ हाँ वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर

0: ही गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्डे में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी। अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई, इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम, शाम, शाम,
0: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर? क्या क्या हुआ, क्या बहादुर?
2: साहब,
0: अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
2: साहब, साहब, साहब, वो
0: क्या साहब, वहाँ वहाँ कहाँ?
2: साहब, साहब, साहब, साहब, वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: साहब, साहब, वहाँ
0: कहाँ बहादुर?
2: साहब, वहाँ कोयला खान में। शाम,
0: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: शाम, कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया। साहब,
0: पानी आ गया?
2: मजदूर लोग वहाँ अंदर फंस गया है। साहब,
0: कितने होंगे?
2: साहब बहुत, साहब मर गया होगा। साहब,
0: अरे मरेंगे तो अब हम
2: क्या बोले? साहब,
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आओ साहब, चलो वहाँ लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच जाऊं। जल्दी आना साहब, जल्दी आना साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं।
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ। लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया। साहब, हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब, होंगे करीब 35।
0: 35?
3: आप कुछ कीजिए। हाँ साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ, चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: हाँ जी साहब, वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खान में पानी भर चुका है।

0: पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। मतलब कहीं सुना आपने?
1: देखिए तो मेरी भी कुछ मजबूरी है,
0: हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत।
1: अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
0: अरे तो आप किस लिए है? आप कभी नजर आते हैं?
1: देखिए देखिए मेरी एक बात
0: सुनिए। देखिए क्या देखे? तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
1: मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
2: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में है कि नहीं?
3: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
2: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
3: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा।
2: गॉड,
3: तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
2: क्या करूं?

0: का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा।
1: साहब,
0: तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
2: क्या करूं? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
0: होंगे यही करीब करीब 400-450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
3: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते शंकर। वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
3: जी, चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
2: मैं बात कर लूं?
3: जी।
2: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
3: जी नहीं, अभी तो घर ही पर
4: है।
2: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ। मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
5: कमाल, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो।
4: हम लोग मामले को ऊपर
5: पता नहीं बात क्या करनी है।
2: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
6: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
7: कब हुआ ये
6: सर? करीब आधा घंटा पहले।
5: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
7: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर मर गए?
5: मर गए सर? मतलब
7: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
5: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
7: डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
5: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
7: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो। बस कोई मरे नहीं, यू गॉट दैट? आई डोंट फियर एनी कैजुअल्टी निगम।
5: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो,
2: नो, फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है।
5: ओ गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
2: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
5: आने की सोच रहे हैं अभी।
2: जनरेटर वगैरह मिला?
3: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
2: What? जी चौकीदार के पास चाबी है, दो लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
5: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
3: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने।
5: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
3: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
5: पुलिस?
3: जी।
5: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
3: चलिए।
4: अरे भेज रहे,
8: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
5: शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
3: वो देखिए साहब, मनोहर वगैरह आ गए।
5: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
0: अरे साहब चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हैं। साहब
5: गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
0: ताला तोड़ दे?
5: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
0: अरे मगर साहब गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
5: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब, आप
2: भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
5: साहब चले चलिए।
2: अच्छा ठीक है, हाँ चलो चलता हूँ मैं।
9: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
5: सुनो
9: जी,

0: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
1: हाँ साहब है।
2: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
0: हाँ अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
2: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोर बहुत भली है साहब।
0: क्या सात बच्चे?
2: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिले ना साहब भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
3: अच्छा
2: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट पे। तो
3: हाँ लीजिए साहब, टूट गया।
0: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
3: हाँ सर।
4: अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
2: हाँ कुछ।
4: अरे मनोहर,
2: हाँ
4: टॉर्च है तुम्हारे पास?
2: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखिए शायद इस अलमारी में। हाँ ढूंढो।
4: मिल गई, मिल गई, टॉर्च मिल गई।
2: अच्छा साहब टॉर्च मिल गई।
0: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
3: जी अच्छा।
0: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
3: जी
0: अभी देखो, अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
4: जी अच्छा जी अच्छा। अरे ओ बाबू
0: अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
4: अब बैठो भैया,
3: आप रहने दें, हम निकाल देंगे।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो, लगाओ दो। ये तो घूमता ही नहीं है। शंकर अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। नारी क्यों लगने लगी? साहब लगता है चीफ साहब आ गए। लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर तू मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाई बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए। तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
3: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
0: जी अच्छा।
3: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
0: जी समझो
3: मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
2: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
3: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
0: ये लीजिए सर, पाइप छोटा ना पड़ जाए।
3: सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
4: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
0: 400 फुट?
4: पाइप 600 फुट लंबा है।
0: अच्छा
4: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
5: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी।
3: अरे भाई अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
0: शाबाश शाबाश मैंने, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
2: जी साहब जी साहब। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
0: वेरी गुड वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
3: अरे अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा है? अरे अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: अरे पागल हो गए क्या?
3: जाने कौन भड़का रहा है ने?
2: साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
3: वो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
2: नहीं साहब नहीं साहब। अरे हम लोग जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाए बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया?
4: मगर ध्यान रहे, ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए।
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कौन?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है।
0: जी बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ। निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे मैंने, एक एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I'm sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really, I'm very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं। ओह गॉड, नर्स भैया, इंजेक्शन।
3: डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
3: जो तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
5: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
4: जी, विविध भारती देश की सुरीली
5: धड़कन। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
5: बिल्कुल।
4: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाए, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है। इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है।
5: बोमन ईरानी
4: को,
5: डैनी डांसोंग
4: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
5: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
4: बहुत प्यारी फिल्म,
5: बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे। एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
4: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत,
5: बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
4: वो उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की, तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था, कम्मो कम्मो।
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो हाँ, अरे अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे।
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे, पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके

0: बेटियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहां से हुई उनके साथ और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं किस विषय पे बात कर रही हूं, तो मैं चाहती हूं वो विषय आप खुद ही शुरू करें और हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटर और गुरु मानती हूं
0: जी,
1: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूं। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो
0: जी,
1: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
0: जी,
1: बहुत मोहब्बत से और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं
0: जी,
1: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
0: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी,
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
0: अच्छा।
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी
1: एक स्केड्यूल करने का
0: जी,
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान।
0: ओके।
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था।
0: हाँ।
1: स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे,
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे
0: जी।
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए,
0: हम पैसे के लिए गए थे,
1: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है। हाँ। कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
0: कोई दिक्कत नहीं है,
1: दिक्कत नहीं है। मम्मी ने कहा बेटा चलो करते हैं, देख लो क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोइराला थी।
0: बहुत तो मेरी प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म जी।
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेशाचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया।
0: तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: He was a very charming personality on set for me।
0: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
1: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है
0: जी।
1: वो भी बड़े यंग ही थे
0: बट
1: वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी मेरे लिए उस वक्त, कुछ भी सब कुछ नया था।
0: हाँ।
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा,
0: वही सीख रहे थे वही कर रहे थे।
1: तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार।
0: हाँ।
1: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं
0: जी।
1: सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विद मी।
0: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे।
1: हाँ, और वो समझते थे कि वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे
0: जी,
1: उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी। उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी।
0: तो मतलब बताने
1: खामोशी
0: तो जाना पड़ेगा।
1: के बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने। जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है।
0: हाँ।
1: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल।
0: हाँ।
1: तो तू सिखा।
0: हाँ।
1: सनी डोली बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा।
0: हाँ।
1: गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा।
0: हाँ।
1: तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ गया, तो वो सलमान भाई के साथ

0: रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया था वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जो क्या करो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज भरजात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री सूरज भरजात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो
1: जी बिल्कुल,
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज्यादा, रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं, तो ये चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजना
0: पड़ी। अब मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था। सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट, वो हिट वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था,
0: ऑरा क्रिएट हो गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे रील बनी, दब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई, मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना,
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह।
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर,
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते है बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: ही नोज
1: उबत है, काबिलियत है,
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना
1: जी,
0: दिया
1: जी।
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका,
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का,
1: वो बहुत खूबसूरत
0: वो गाना मुझे दिया बुला के, तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आप के लिए आसानियां हो जाती है
1: जी।
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है। नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
1: जी।

0: श्रोता हमारे साथ है शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना जो अपना एक कहा जाता ना एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, हाँ, जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाते हैं की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी
1: उनकी, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, हाँ। उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ।
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़ जाते
0: हैं, तो सभी विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट।

0: नहीं हो, कह रही यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
1: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
0: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी नातों की नींद उड़ गई थी और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके जो आपने कहा आंगन के अंदर किया,
1: हाँ
0: वही चैलेंज था। हाँ। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
1: उम्र का भी अंतर
0: है, उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते अलग करते अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप।
1: हाँ।
0: यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए। अच्छा जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का,
1: हाँ,
0: गड्डी लेके,
1: हाँ, हाँ,
0: वही स्टेप रखेंगे। उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, हाँ, जो अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ,
0: मैंने कहा कि वो 70s का बच्चा है तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला।
1: हाँ,
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ,
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे जो सबसे बड़े हिट हुए। एक गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है।
1: हाँ।
0: तो हमने चिलमन बनवाई क्योंकि मुझे पता है ना
1: बहुत खूबसूरत सेट था वो,
0: चिलमन बनवा के चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है।
1: हाँ।
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं गाना, इतना खूबसूरत। और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था।
1: हाँ।
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी, आपको हर बार साबित करना पड़ेगा। हाँ। आप बैठ नहीं सकते पीछे।
1: हाँ, यानी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिया, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर हैं, कोहिनूर आपने काम करवा लिया। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है
0: बिल्कुल।
1: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है,
0: मेरा पहला हीरो। मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो।
1: अच्छा
0: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मैं हीरो तो राजपाल यादव ही थे
1: जी,
0: तो मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को।
1: रुलाना आसान है,
0: हंसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको एक मिनट के अंदर। और जिसके अंदर एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं।
1: क्या बात
0: है। बिल्कुल,
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया,
0: काफी काम किया है ना,
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?

0: तक मैंने काम किया, मैं बात करी हूँ 2012-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था
1: जी।
0: तमन्ना, कार्तिक, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट,
1: मतलब एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7।
1: 7 मीन 7
0: पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया। नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं
1: क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली।
1: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इन्फोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का चल तेरे इश्क में खो जाते
1: हैं। क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था, कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू तेरे कारण मुझे ये मिला है।
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, हमारी माएं होती है जो हमें,
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ये हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे, उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी, मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस जैसे।
0: एक बार ऐसा होता था, पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है,
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है। हमारी टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी, आजकल वक्त बदल गया है लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात टीचर रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर, हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था। तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मैं स्पीच करके गई, नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पाऊंगी, मैंने अपने भाई को फोन किया ऐसे, बेटा व्हील चेयर पे ले जाना अम्मी को,
0: लेके जाना
1: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ, वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो
0: जी।
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ। उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन
0: जी,
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की है, उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ, काफी कुछ काफी कुछ, अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं
0: जी,
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते, लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के गाने भी अवार्ड में थे
0: जी।
1: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात,
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल।
0: हम सबकी प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना चाहिए, जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और

0: किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल,
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर हमारे

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती है, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है। लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: सो बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं। ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा,
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है। अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी।
0: हाँ,
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही पता चलेगा क्या
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यहीं निकली,
1: यहीं पे गुजरा, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र

0: का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सबर रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात बरते,
0: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस, कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता, आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शबीना जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको ऊपर रखो और उनको बचा के रखो,
0: बहुत जरूरी।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा रे ये बात और बता देनी थी। तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है। यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं चंचल कुशवाहा आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातचीत और करेंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। पर दोस्तों, कार्यक्रम सुनने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं मेरे युवा साथी, उन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। और दोस्तों, हम सभी कहते हैं ना कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी युवा शक्ति होती है, क्योंकि युवा सिर्फ अपने सपने देखने वाली जनरेशन नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखने वाली जनरेशन है। आज का युवा नई सोच रखता है, टेक्नोलॉजी को समझता है, नए स्किल सीख रहा है और अपने दम पर कुछ नया करने का जज्बा भी रखता है। और यही युवा शक्ति जब देश के विकसित और विकास से जुड़ती है ना, तो एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर सामने आती है। और शायद यही सोच है कि जो हमें उस भारत की ओर ले जाती है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। क्योंकि दोस्तों, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी का उत्सव सिर्फ तिरंगा फहराना और देशभक्ति के गीत गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि असली उत्सव तब होगा जब हम अपने देश को आगे बढ़ने में भूमिका निभाएंगे। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हर दिन देश को आगे बढ़ाने में और देश के लिए कुछ करने में आगे बढ़ेंगे। और इसी सोच के साथ इस बार का संदेश है कि आजादी का उत्सव, विकसित भारत का संकल्प लेना। दोस्तों, आज का युवा सिर्फ देश का फ्यूचर नहीं है, बल्कि आज के भारत की ताकत है। हमारे पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है और कुछ नया करने का जुनून भी है। तो दोस्तों, जरूरत है बस इनका सही दिशा में इस्तेमाल करने की। दोस्तों, विकसित भारत का सपना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाईवे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जरूरत है हमें क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार के नए अवसर, इनोवेशंस, स्वच्छ पर्यावरण, आत्मनिर्भरता और सबसे बढ़कर जिम्मेदार नागरिक होने की। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाएंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे। क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी जिम्मेदारियों से शुरू होते हैं। तो आइए, तिरंगे को सलाम करते हुए यह संकल्प लें कि मैं अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगी। और दोस्तों, आजादी का उत्सव सिर्फ तिरंगे को सलाम करने या देशभक्ति के गीत गाने तक सीमित नहीं है। इसलिए आजादी हमें एक जिम्मेदारी भी देती है और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी देती है। और दोस्तों, जब बात जिम्मेदारी की हो तो सबसे पहले बात आती है हमारे देश के युवाओं की, क्योंकि युवा

0: सिर्फ भारत का भविष्य नहीं बल्कि आज के युवाओं की ताकत भी है। तो इसी सोच के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे एक विशेष वार्ता स्वाधीन भारत और युवाओं का संकल्प की ओर, जहां हम बात करेंगे आज के युवा अपने देश के प्रति क्या संकल्प लें और विकसित सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो दोस्तों इसके वार्ताकार हैं रितिका अग्रवाल।
1: सभी युवा साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। संस्कार की धरती, धर्म की भूमि, सर्व गुण संपन्न पवित्र जन्म भूमि, मेरी प्यारी भारत माँ को हम सभी भारतीयों का शत शत नमन। आज 15 अगस्त है, वह दिन जिसे सुनते ही हमारे सामने तिरंगे की तस्वीर आती है, राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है और मन उन असंख्य वीरों की याद से भर जाता है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब वर्षों की संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। 15 अगस्त हमें उत्सव के साथ साथ अपने आप से संवाद करने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान हमारे इतिहास का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वीर साहसी भारतवासी हैं जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं, पर उन्होंने हर छोटे बड़े प्रयास से भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। जब 15 अगस्त आता है तो सबसे पहले हमारे मन में तिरंगा आता है। 3 रंगों से बना हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखने में सरल है लेकिन इसके भीतर बहुत गहरा भाव है। ऊपर का केसरिया रंग हमें साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। वह हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर देश को रखा। बीच का सफेद रंग शांति, सत्य और सद्भाव की भावना से जुड़ा है और नीचे का हरा रंग हमारी धरती, हरियाली, जीवन और समृद्धि की भावना को दर्शाता है। बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसके 24 आरे जैसे हमें बताते हैं कि जीवन में रुकना नहीं है, समय चलता रहता है, देश आगे बढ़ता रहता है और हमें भी अपने कर्मों से आगे बढ़ते रहना है। इसलिए जब तिरंगा हवा में लहराता है तो वह हमारे लिए त्याग, शांति, विकास और निरंतर गति का संदेश बन जाता है और यही कारण है कि तिरंगे का सम्मान करना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। घर पर ध्वज से मन में भावना तक, इसी भावना को लोगों तक पहुंचाने वाला एक सुंदर प्रयास है हर घर तिरंगा। 2026 में हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है। देशभक्ति की पहली छोटी सी शुरुआत हमारे स्कूलों से होती है। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल में तिरंगे के नीचे खड़ा होता है, जब वह पहली बार राष्ट्रगान गाता है, जब उसे किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाई जाती है, जब वह 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ समझना शुरू करता है, तब उसके भीतर देश के प्रति एक भाव पैदा होता है। किसी स्कूल के मैदान में अलग अलग परिवारों, भाषाओं और क्षेत्रों से आए बच्चे एक साथ तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, उस समय कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी पहचान एक होती है, हम भारतीय हैं। आज का नागरिक, आज का युवा कल का निर्माता है। हमारे पास इंटरनेट है

डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, स्पेस रिसर्च है, लेकिन सवाल यह है हम इन साधनों का उपयोग किस लिए करेंगे? केवल समय बिताने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए? केवल टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बनेंगे या टेक्नोलॉजी के क्रिएटर भी बनेंगे? यही आज के युवा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। हम आगे बढ़ें, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर पेड़ आगे मजबूत बनता है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, वही तेज हवा में भी खड़ा रहता है। उसी तरह जिस युवा को अपनी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की समझ होती है, वह दुनिया के किसी भी बदलाव के सामने अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की एक और बड़ी शक्ति है। लाल किला हो, सांची का स्तूप हो, अजंता अलोरा की गुफाएं हो, हमारे प्राचीन मंदिर हो, किले हो, इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। किसी स्मारक की दीवार पर अपना नाम लिख देना गर्व की बात नहीं, वहाँ कूड़ा फेंकना गर्व की बात नहीं है, उसे नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं है, उसकी रक्षा करना देशभक्ति है। क्योंकि अगर हम अपनी धरोहर को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को कहाँ देखेगी? हम भविष्य बनाते समय अतीत को मिटा नहीं सकते, हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमें चलना भी होगा। अधिकार और कर्तव्य, आजादी की बात करते हुए हमारे अधिकार और कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार, अपने धर्म और संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता। लेकिन क्या केवल अधिकार जान लेना पर्याप्त है? नहीं, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। संविधान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और देश की प्रगति में योगदान देना। इसलिए हमें हमेशा यह नहीं पूछना चाहिए मुझे देश से क्या मिला, कभी यह भी पूछना चाहिए मैं अपने देश को क्या दे रहा हूँ। सभी देशवासी अलग अलग प्रकार से अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से पूरा करके देश के प्रति योगदान देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से, एक शिक्षक अपने ज्ञान से, एक डॉक्टर अपने उपचार से, एक किसान अपने श्रम से, एक सैनिक अपने साहस से, एक वैज्ञानिक अपनी खोज से, एक कलाकार अपनी कला से और प्रत्येक नागरिक भी अपनी ईमानदारी से देश को बहुत कुछ दे सकता है। अनेक रंग एक भारत, भारत की सबसे खूबसूरत बात है हमारी विविधता। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे पहनावे अलग हैं, हमारे भोजन अलग हैं, हमारे त्योहार अलग हैं, हमारी लोक कलाएं अलग हैं, लेकिन जब तिरंगा सामने आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की संस्कृति का अपमान करके नहीं। अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन दूसरी भाषा को छोटा समझकर नहीं। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरों की परंपराओं का सम्मान करते हुए। यही भारतीयता है। आजादी का एक अर्थ और है, डर के बिना सही बात कह सकना, शिक्षा पाने का अवसर, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता और साथ ही यह समझ कि मेरी स्वतंत्रता वही तक है जहां से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। आजादी मुझे अधिकार देती है, लेकिन आजादी मुझे जिम्मेदारी भी देती है। इसलिए आजादी मिली है विरासत में, पर इसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे वीरों ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया, अब हमें इसे मजबूत, सुरक्षित, स्वच्छ, शिक्षित, संवेदनशील और विकसित बनाना है। जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जहां युवा को अवसर मिले, जहां महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर हों, जहां किसान सम्मान और सुविधा के साथ आगे बढ़े, जहां विज्ञान और रिसर्च मजबूत हो, जहां टेक्नोलॉजी आम आदमी

0: आए जहां प्रकृति सुरक्षित हो, जहां हमारी ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित हों। तो इस 15 अगस्त तिरंगे को सलाम करते हुए उसके संदेश को भी अपने जीवन में उतारें। केसरिया हमें साहस दे, सफेद हमें सत्य और शांति का मार्ग दिखाए, हरा हमें प्रकृति और समृद्धि की याद दिलाए, अशोक चक्र हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे और भारत माता का गौरव सदैव बढ़ता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।
1: तो दोस्तों, अब आप सभी भी तिरंगे को सलाम करते हुए ये संकल्प लें कि मैं अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाऊंगी। तो दोस्तों, ये भी प्रॉमिस कीजिए आप सभी कि सिर्फ आज ही नहीं, आप हर दिन देश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और देश को कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, देशभक्ति और संकल्प से भरे इस माहौल को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो हमें हौसला देता है, जीत का जज्बा देता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों, गीत है विजय भवा, फिल्म मणिकर्णिका से शंकर महादेवन की आवाज में, बेहद प्यारा सा गीत।

0: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर,
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है

0: रहती हो। आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है, क्योंकि दोस्तों भारत की आजादी की कहानी सिर्फ संघर्ष और बलिदान की कहानी नहीं है बल्कि उन महान विचारों की भी कहानी है जिन्होंने देशवासियों और खासकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम और नई चेतना जगाई है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे श्री अरविंदो जी, जिन्होंने जो महान दार्शनिक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने लेखन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी जगाई। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक भी है, इसलिए उनका जन्मदिन भी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक और योग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी रचनाओं और विचारों में मानव जीवन के विकास, आत्मविश्वास और चेतना को विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों आज के युवाओं के लिए श्री अरविंदो जी का जीवन एक प्रेरणादायक है कि अपने विचारों पर विश्वास रखना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमारी और भी चर्चा होने वाली है, फिलहाल चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की ओर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए सुनिए सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

दोस्तों आज हम सभी आसमान में लहराते हुए तिरंगे को देख रहे हैं। कुछ पल के लिए जब हम रुकते हैं तो हमारी नजर उन तीन रंगों पर ठहर जाती है। लेकिन क्या हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का एक ध्वज है? नहीं, तिरंगा भारत की पहचान है, हमारे वीरों के बलिदान की याद है और देश के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे तिरंगे का केसरिया रंग हमें साहस, त्याग और बलिदान और भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सफेद रंग शांति, सत्य और सद्भाव का संदेश देता है। वही हरा रंग हमारे देश की

धरती, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और दोस्तों, इन तीनों रंगों के बीच मौजूद अशोक चक्र हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, रुकना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इसके 24 स्पोक्स हमें जीवन में निरंतर कर्म की ओर प्रगति की याद दिलाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, इन तिरंगों के सम्मान के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया। हमारा तिरंगा हमें याद दिलाता है कि देश के प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हमें जिम्मेदारियों से अपना काम करना चाहिए, संविधान और देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अपने ज्ञान व हुनर से देश को आगे बढ़ाए रखना, यही हमारे तिरंगे के प्रति हमारा सच्चा सम्मान है। तो दोस्तों, आपको भी हमें अपने तिरंगे की सम्मान करना चाहिए और ऐसे ही हर घर तिरंगा की वैल्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ले चलते हैं हम कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनवाते हैं गीत तिरंगा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत तिरंगा, फिल्म योद्धा से तनिष्क बागची और बी प्राक की आवाज में बेहद प्यारा सा गीत। तो दोस्तों आजादी का जश्न मनाना हम सभी को पसंद है, तिरंगा, देशभक्ति के गीत और आजादी की कहानियां। लेकिन क्या आजादी का मतलब सिर्फ अपने अधिकारों को जानना है? बिल्कुल नहीं, हमारे अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं, तो हमारे कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। हमें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन एजुकेशन का सही यूज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ ये ना सोचें कि देश हमें क्या दे रहा है, बल्कि ये भी सोचें कि हम देश को क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की सीख बस इतनी सी है कि आजादी का जश्न जरूर मनाइए।

लेकिन अपने अधिकारों को पहचाने, लेकिन उनके साथ अपना फर्ज भी निभाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत। और आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, ये सुझाव आप हमारे आकाशवाणी झांसी के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर जरूर शेयर करें। हमारा पिन कोड है 284128। तो इसी के साथ अब अपने दोस्त चंचल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को रूपाली का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहनों, आज का दिन जो है वो अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं को याद करने का है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिरंगे की शान, देश की आन और स्वतंत्रता की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए हम मना रहे हैं जश्न आजादी स्वतंत्रता के 80 वर्ष। आजादी के इस संघर्ष में भारतीय नारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस हो, सरोजनी नायडू की बुलंद आवाज हो या अरुणा आसफ अली और उषा मेहता का संघर्ष, भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने साहस और समर्पण की अमिट छाप छोड़ी। तो आज नारी जगत में हम बात करेंगे इसी गौरवशाली सफर की। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आत्मनिर्भर भारत तक भारतीय नारी की बदलती भूमिका और बढ़ती शक्ति की। बहनों, आजादी के बाद भारतीय महिलाओं की यात्रा ने अनेक आयाम देखे। शिक्षा से लेकर विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, खेल, सेना, राजनीति, कला और अंतरिक्ष तक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। आज बेटियां अपने सपनों को पहचान रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तो आइए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस विशेष वार्ता की शुरुआत करते हैं और याद करते हैं उन वीरांगनाओं को जिनके साहस ने आजादी की मशाल को जलाए रखा। वार्ताकार कल्पना वर्मा।
1: सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष भारत के स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस वर्ष भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मना रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस अनवरत कई शताब्दियों के स्वतंत्रता संघर्षों का सुफल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों के पराक्रम और बलिदान की गाथा नहीं है, बल्कि यह मातृशक्ति के अदम्य साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति का स्वर्णिम अध्याय भी है। जब जब देश की पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता के आंचल को जकड़ा, तब तब इस देश की नारियों ने चंडी का रूप धारण कर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध बिगुल फूंका। देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में महिलाओं ने साहस, शौर्य, वीरता और त्याग का परिचय दिया। वीरांगनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की नारी केवल गृहस्थी संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह रणचंडी बनकर राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहा। यह क्रांति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सरजमी से खदेड़ने के लिए युद्ध छेड़ दिया था।

इसी प्रकार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने हिंद स्वराज का स्वप्न न सिर्फ देखा बल्कि इसे साकार करने के लिए संपूर्ण भारत में वे इसकी प्रेरणा स्रोत भी रहीं। यह पहली स्वतंत्र भारत की परिकल्पना थी। जब हम 1857 के समय की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो पंक्तियां बरबस ही होठों पर आ जाती हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से पूरा देश कराह रहा था तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर जो मारण चंडी का रूप धारण किया था उसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक स्त्री नहीं थी, वे एक विचार थी, एक क्रांति थी। वह इस देश की महिलाओं के उस स्वाभिमान की प्रतीक थीं जो कभी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकती। और जब हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो हम वीरांगना झलकारीबाई को नहीं भूल सकते। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को किले से बाहर सुरक्षित निकालने के लिए स्वयं रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से टक्कर ली और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी भारत की महिलाओं ने केवल हथियारों से नहीं बल्कि वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बात जब हम वैचारिक क्रांति की करते हैं तो हम याद करते हैं बेगम हजरत महल को, जिन्होंने 1857 के संग्राम में अवध की कमान संभाली और अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता का स्वरूप बदलने लगा। 20वीं सदी आते आते यह एक जन आंदोलन बन गया। महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत की नारी ने अपनी दहली लांघी और वह स्वतंत्रता के महायज्ञ में कूद पड़ी। महिलाओं ने भारतीय राजनीति और जन आंदोलनों की दिशा ही बदल दी। भारत की विदुषी और उत्साही महिलाओं ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी सरकार के विरोध में आंदोलन चलाए थे और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा बंगाल में एकता स्थापित करने की शपथ ली थी। उन्होंने रक्षाबंधन समारोह का आयोजन करके हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया था तथा प्रभात फेरियों के माध्यम से अपनी एकता का प्रदर्शन किया था, जिससे अंग्रेजी सरकार को बाध्य होकर बंगाल विभाजन का आदेश वापस लेना पड़ा था। 1907 में जब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम था तब जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में पहली बार विदेशी धरती पर भारत का झंडा लहराया। उन्होंने दुनिया के सामने बुलंद आवाज में कहा था, यह भारत का झंडा है, इसे नमन करो और इसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहो। इसी तरह जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग चुना तब देश की आम महिलाओं ने घर की चौखट लांघकर इतिहास रच दिया। गांधी जी के एक आह्वान पर लाखों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने न केवल गांधी जी का साथ दिया बल्कि उनके जेल जाने पर आंदोलन की कमान स्वयं संभाली। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, उन्होंने अपनी कविता से ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक नेतृत्व से भी अंग्रेजों को चौंका दिया। 1930 के धरासण नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जब सरोजनी नायडू ने निडरता से किया तो उसको देखकर दुनिया दंग रह गई। जब हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो दो नाम हमारे जहन में बिजली की तरह कौंध जाते हैं, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। जब सभी कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 33 वर्षीय अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराकर पूरे देश की क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। उषा मेहता, जो 22 साल की थीं, उस युवा लड़की ने ब्रिटिश पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गुप्त रेडियो

की स्थापना की थी। 42 दिन तक उस रेडियो ने पूरे भारत में आजादी का संदेश प्रसारित किया। जब हम आजादी के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की बागडोर कैप्टन लक्ष्मी सहगल के पास ही थी। एशिया में पहली बार महिलाओं की पूरी एक सैन्य टुकड़ी युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार की गई थी। बंदूक थामे इन महिलाओं ने साबित कर दिया था कि नारी केवल ममता का रूप नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह काली मां का रूप भी ले सकती है। सुचेता कृपलानी, जिन्होंने आजादी के आंदोलनों को संगठित किया और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 73 वर्ष की मातंगनी हाजरा, जिन्हें गांधी बूढ़ी कहा जाता था, 1942 में जब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाईं, तब भी उनके हाथों से तिरंगा नहीं छूटा और वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उत्तर पूर्व भारत की गायदिनलियो, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट, कमला

तैयार की, बल्कि स्वतंत्रता के आंदोलन को पोषित और पल्लवित भी किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक जनजागृति, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्याय का सतत प्रतिकार तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था का पूर्ण अध्याय है। इसके हर पक्ष में महिलाओं ने अतुलनीय योगदान दिया है।

संघर्ष और बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और आज नारी जगत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी वीरांगना को जिन्होंने ये साबित किया कि नारी केवल संवेदनशीलता और ममता की प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की भी मिसाल हो सकती है। तो जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने कई महान नाम उभर कर आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्ने से निकलकर आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल भी ऐसा ही एक नाम है। 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास यानी जो आज का चेन्नई है उसमें जन्मी लक्ष्मी स्वामीनाथन ने चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टर बनी। लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक सफल चिकित्सक बनना नहीं था, उनके भीतर देश और समाज के लिए कुछ करने की गहरी भावना थी। समय ने उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचाया और यहीं उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी के स्वतंत्र भारत के सपने और उनके विचारों ने लक्ष्मी को बेहद प्रभावित किया और फिर वो आजाद हिंद फौज से जुड़ गईं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिलाओं की शक्ति और क्षमता को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को इसका नेतृत्व सौंपा। जरा कल्पना कीजिए उस दौर में जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर अपने फैसले लेना भी आसान नहीं था, एक महिला सैन्य वर्दी पहनकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। ये केवल एक सैन्य रेजिमेंट नहीं थी, ये भारतीय नारी के आत्मविश्वास और साहस की घोषणा थी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिलाया और उनमें ये विश्वास जगाया कि देश की आजादी की लड़ाई में वे भी बराबर की भागीदारी।

आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। ये केवल एक सैन्य रेजिमेंट नहीं थी, ये भारतीय नारी के आत्मविश्वास और साहस की घोषणा थी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिलाया और उनमें ये विश्वास जगाया कि देश की आजादी की लड़ाई में वे भी बराबर की भागीदार है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सैनिक की नहीं थी, वो डॉक्टर भी थी। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने घायल सैनिकों और जरूरतमंद लोगों की सेवा की, यही उनके व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत बात थी। एक हाथ में सेवा का भाव और दूसरे हाथ में देश के लिए संघर्ष का संकल्प। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का समाज के प्रति समर्पण समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने जरूरतमंदों के बीच चिकित्सा सेवा जारी रखी। उनका पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं है, अपने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ा होना भी देश सेवा है। आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की कहानी हमें अपने आप से एक सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम उसी आजादी की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था? आज की बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही हैं। विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये उसी बदलाव की यात्रा है जिसकी नींव रखने में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं का योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर लक्ष्मी सहगल तक और आज की आत्मनिर्भर बेटी तक, ये भारत की नारी शक्ति की अनवरत यात्रा है। तो बहनों, बातें और भी करेंगे आपसे, पर चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से, आवाज बी प्राक की।

तो अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिया गया था फिल्म केसरी से, आवाज बी प्राक की। तो बहनों, आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और ये सोचने का अवसर भी है कि आखिर आजादी का हमारे जीवन में वास्तविक अर्थ क्या है। आजादी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमारा देश किसी दूसरे देश के शासन में नहीं है। आजादी का अर्थ है अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, और सबसे बढ़कर अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश के प्रति जिम्मेदार बनना। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। जिस तरह हमें अपने अधिकारों की चिंता है, उसी तरह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि एक बेहतर देश केवल सरकारों या व्यवस्थाओं से नहीं बनता, बल्कि देश के हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे प्रयासों से बनता है। जैसे अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम मानवता को मजबूत बना रहे हैं। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो हम अपने भारत को बेहतर बना रहे हैं। और अगर हम अपने भारत को बेहतर बना रहे हैं तो जरूर हम अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं। अगर हम किसी महिला का सम्मान करते हैं तो हम एक सुरक्षित और सम्मान समाज की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और अगर हम अब ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल अपने लिए स्वतंत्र भारत का सपना नहीं देखा था, उन्होंने तो एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। इसलिए आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आजादी की असली कीमत तभी समझी जा सकती है जब हम दूसरों की आजादी और सम्मान का भी उतना ही ख्याल रखें जितना अपने अधिकारों का। हम अपने जीवन में अक्सर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं। कभी असफलता हमें तोड़ देती है, कभी किसी की कही हुई बात हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है, कभी परिस्थितियां हमें ये महसूस करा देती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आजादी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां हमारे रास्ते को रोक तो सकती हैं, पर हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सामने भी मुश्किलें थी, जेल थी, संघर्ष था, अभाव था और जीवन का खतरा भी था, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल समय स्थायी नहीं होता, लेकिन हमारा साहस हमें आगे ले जा सकता है। खासकर हमारी बेटियों और महिलाओं के लिए यह सीख बहुत जरूरी है।

अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने के बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हर महिला के भीतर कुछ ऐसा करने की क्षमता होती है जो शायद वो स्वयं भी नहीं जानती। जरूरत है तो केवल एक अवसर की, थोड़े से आत्मविश्वास की और अपने ऊपर विश्वास करने की। बहनों, देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्वों पर दिखाई देने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। जब हम सड़क पर यातायात नियमों का पालन करते हैं, जब हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे लिए आजादी एक गौरव है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी भी। हमें उन्हें ऐसा भारत देना है जहां वे सुरक्षित महसूस करें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भेदभाव का सामना ना करें। देश बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तो एक अच्छी सोच, एक सही निर्णय और एक छोटा सा सकारात्मक कदम भी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म स्वदेश से, आवाज ए आर रहमान की।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया गया था फिल्म स्वदेश से, आवाज एआर रहमान की। तो बहनों अब समय है आपसे विदा लेने का, पर आप अपने सुझाव हमें पत्र में लिखकर जरूर भेजिएगा। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक कानपुर रोड आकाशवाणी झांसी, पिन कोड 284128। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं रूपाली विदा लेती हूं। नमस्कार।

0: किसान बाणी
1: कार्यक्रम चौपाल सुनने बारे हमारे सब किसान भैया बहन और राकेश भैया की नमस्कार। और हाँ, अपन देख रहे के आज कौन सो खास दिन है, आज है 80वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि अपन ने 80 स्वतंत्रता दिवस मना लिया। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आप अपनी खेती किसानी के काम में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो और भारत को खाद्यान्न से भरपूर रखो। देखो, जब हम बात करते हैं अपने देश की, तो देखो देश के लाने करवे के लाने कोनो भी क्षेत्र में हम हैं। अगर हम खेती के क्षेत्र में हैं तो खेती के क्षेत्र में रह के अपने देश के लाने कर सकते हैं। उद्योग धंधन के क्षेत्र में हैं तो उद्योग धंधन के हिसाब से कर सकते हैं। डेयरी उद्योग में हैं तो डेयरी उद्योग के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने किसान भैया की, तो देश की आज़ादी में देखो जिते हमारे सैनिकन को, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हाथ रहो, उतने कई हाथ हमारे जो किसान भैया रहे, किसान भैया ने भी बहुत आज़ादी के जो आंदोलन है तो बा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। तो और जब हम बात करते हैं अपनी आज की, और आज से करीब 80 साल पहले की, यानी कि स्वतंत्रता जब हमें नहीं मिली थी उस समय की, तो हमने बहुत कछु अपने खेती के करवे के तरीके में बदलाव देखो है। और जब बुजुर्गन से बात होते है तो जो उस समय के हैं तो वे बताऊ थे कि भैया आज कितनो बदलाव आ गयो है। एक समय है तो जब उस समय पे केवल 50 मिलियन टन हमारे ते खाद्यान्न उत्पादन होतो, और आज के समय में लगभग 400 मिलियन टन से ऊपर हम खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे। तो हमने बहुत सारी उपलब्धि हासिल करी। सिंचाई की सुविधाएं 17% थी केवल हमारी कृषि भूमि, सिंचाई के लाने सिंचाई की सुविधाएं 17% भूमि तक पहुंचती। आज की तारीख में लगभग 60% जो भूमि है उतने सिंचाई के साधन पहुंच गए। पहले हम लोग हल बैल से खेती करते, आज ट्रैक्टर है, क्रेशर है, ड्रोन है और सैटेलाइट डाटा है। आज तो ऐसा आ गो कि जो पहले अपनी खेती की जो जमीन है वह नपने आती तो लेखपाल जाते और भी नापते। अब तो डिवाइस आ गई, उसे अपने आप पतो चल जाए कि जा आपकी सीमा है, जा आपकी सीमा है। तो बहुत हमने तरक्की करी है और हरित क्रांति ने तो देखो बहुत कछु बदलाव लिया है। लेकिन उके संगे संगे कछु अपन ने खो भी है, कछु चुनौतियां भी अपने संगे हैं। कहे के अपन ने अंधाधुंध रसायन को उपयोग करो तो अपनी खेती की जो जमीन है वह धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जा रही। सीमांत किसान की जो खेती में लगने वाली लागत है वह बढ़ गई, बे परेशान। भू स्तर गिर रहा है और जलवायु परिवर्तन, तो इमें कछ कहूं ना कहूं हम सब उके लाने जिम्मेदार हैं। तो आज के ई पावन पर्व पे हम सब जो प्रण लें कि हम अपने खेत की मिट्टी बचाबे के लाने, खेत की उर्वरता बचाबे के लाने, जैविक खादन की तरफ मुड़े, रासायनिक खादन को कम से कम उपयोग करें, पानी की एक एक बूंद को बचाव करें, खेत में पानी, खेत को पानी खेत में रखें, और दूसरी चीज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पराली ना जलाएं। तो ये सब अपन काम करके अपने देश के लाने कछु ना कछु तौर पे अच्छो काम कर सकते हैं। और देखो, जैसी हमने बात करी थी कि जो हमारे किसान हैं और सीमा पे जवान हैं,

0: तो सीमा पे जवान जितनी मुस्तैदी से रक्षा करे थे देश की सीमाओं की, वैसे ही खेत में किसान पूरी मुस्तैदी के साथ लगोरत है और हमारे देशवासी इनके लाने खाद्यान्न को उत्पन्न करे थे और खाद्यान्न की आपूर्ति करे थे। तो आज के ये पावन दिवस पे हम अपन को एक संगोष्ठी सुनवा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की आन बान और शान, सीमा पर जवान और खेत में किसान। तो सबसे पहले सुने अपन संगोष्ठी और बाद में आपसे और बातचीत हुई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में पधारे हमारे भूतपूर्व सैनिक किसान भाइयों और हमारे सभी सम्मानित श्रोताओं को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसका विषय है स्वतंत्रता दिवस की आन वान शान, सीमा पर जवान और खेत में किसान। देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवान भाई और देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करने वाले हमारे सम्मानित अन्नदाता किसान भाई, आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगोष्ठी की शुरुआत करें इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को हमारे आमंत्रित अतिथि अपना परिचय दें।
1: मैं कर्नल जगदीश प्रसाद शर्मा, वर्ष 1982 में परमानेंट रेगुलर कमीशन प्राप्त करने के पश्चात सेना में लगभग 30 साल मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आजकल मैं झांसी में निवासरत हूं रिटायरमेंट के पश्चात।
0: और अब हमारे जो दूसरे सैनिक भाई हैं उनसे भी परिचय देते हैं।
2: मैं नायब सूबेदार राम प्रकाश, 1979 में आर्मी ज्वाइन किया था। 2005 में मैं रिटायरमेंट होके 26 साल नौकरी करके, इसके बीच में मैं जेएनके में श्रीनगर ले इधर आसाम में रंगिया, इसके बाद में गुवाहाटी और ऊपर ढोंग टोंग जंग तक सेवाएं दी हैं।
0: अब हमारे बीच जो अन्नदाता किसान भाई हैं, सबसे पहले आप हमें परिचय दें।
3: सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, मैं निर्मल यादव हूँ। मैं पेशे से पत्रकार रहा हूँ, लगभग 2 दशक तक मैंने दिल्ली और जर्मनी में पत्रकारिता की, इसके बाद अब मैं झांसी में खेती के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। पिछले 4 साल से लगातार मैं खेती की जो बारीकियां हैं उनको सीख रहा हूँ और खेती को ही अपने जीवन का आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ झांसी में रहकर।
0: अब हमारे दूसरे किसान भाई
4: जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मैं अजय कुमार झांसी जिले के ग्राम बिजना का निवासी हूँ।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यह तो तय है कि किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये भी बात है कि जब कोई भी काम हम करते हैं और अगर हमें उसे पूरे मनोयोग से करना चाहते हैं तो सुरक्षा की भावना, सुरक्षित रहना ये बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की भावना की बात आती है तो हमारे सैनिकों की इस क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो हमारे जो किसान भाई हैं श्री निर्मल यादव जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों की क्या भूमिका है।
3: अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें तो मुझे लगता है उसके पहले हम सब जीव जंतुओं के तौर पर, चाहे वो मनुष्य जाति हो या जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, उनकी अपनी दैहिक और भौतिक सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। ये जो सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम है ये किसी भी देश के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि इस धरती के सभी देशों में सेना या जवान इस सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। दूसरी जो सुरक्षा होती है जो जीवन से जुड़ी है वो खाद्यान्न सुरक्षा है, और वो जो सुरक्षा है वो किसान किसी भी देश में उस सुरक्षा की आपूर्ति करते हैं या उसको सुनिश्चित करते हैं। तो अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी का नाम जेहन में आता है तो वो जवान है। इसके बाद हमारे जो पेट की सुरक्षा, जिसे हम खाद्यान्न सुरक्षा कहते हैं, भूख मिटाने का जो काम है वो हमारे देश के किसान करते हैं, इसीलिए उनको अन्नदाता कहते हैं। तो सीमा पर जवान और खेत पर किसान, इसीलिए ये नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और वो ही नारा है जो हमारी सभी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को, बहुत मौजूदा पीढ़ी को और पिछली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही है सेना के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखने के लिए। क्योंकि अगर जवान नहीं होगा तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं होगा, और जब तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक खाद्यान्न की सुरक्षा या किसी अन्य तरह की सुरक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
0: अब हमारे बीच एक और किसान भाई हैं, अजय कुमार जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज भारत की जो जनसंख्या है, मैं समझता हूँ पूरे

0: विश्व में जितने भी देश हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की ही निकलेगी। ऐसे में हमारे किसानों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उसी से हमें खाद्यान्न की भी आपूर्ति करनी होती है। तो आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो खेती किसानी के कामों में कितना अंतर आया है, इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं, आपके क्या विचार है?
1: पहले की खेती की अगर बात की जाए तो पहले की खेती जो थी वो प्रकृति पर निर्भर थी, जिसमें किसान हल से और बैलों का उपयोग करते थे और खेत में उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद वगैरह का यूज किया जाता था और ज्यादातर सिंचाई के लिए मौसम पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था, नहरों की संख्या कम थी। और अगर उसी में आज की आधुनिक कृषि की बात की जाए तो उसके लिए नए नए साधन आ गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इनका यूज ज्यादा होने लगा है और उन्नतिशील बीज आने लगे हैं, रासायनिक खाद कीटनाशक इनका यूज ज्यादा होने लगा है, इससे उत्पादन बढ़ा है।
2: राकेश जी, हाँ जी, हमारे अजय भाई ने बताया जो किसान है प्रगतिशील कि पहले जो खेती होती थी वो प्रकृति पर निर्भर थी, आज भी उसकी आवश्यकता पड़ रही है और हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। ये निश्चित है कि खेती अच्छी होती थी, जो हमारे खाद्यान्न थे, जो भी उत्पादन किसान भाई करता था वो जहर मुक्त थे। जो आधुनिक कृषि आई है उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता पे असर हुआ है।
0: उसका एक कारण है कि हमने जो रासायनिक खादे हैं और रासायनिक जो हम लोग छिड़काव करते हैं कीट प्रबंधन के लिए, उसका हमारे वातावरण पर पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है। जो उससे उत्पन्न होने वाला अन्न है उसको जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो आज फिर से कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने की जरूरत है, लेकिन एक शर्त के साथ कि हमारे जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिक भाई नए नए तरीके, नई नई तकनीकियां बता रहे हैं किसानों को कि हम कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ भी लौटें और अपना खाद्यान्न उत्पादन भी हम बढ़ा सकें।
2: और राकेश जी, हाँ जी, निश्चित है कि हमारा देश किसानों से धनी है, वैज्ञानिकों से धनी है, फौजियों से धनी है।
0: बिल्कुल। और एक और बात भी, सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में है इस समय।
2: तो जहां तक उत्पादन की बात आपने की है कि उत्पादन में कमी नहीं आएगी, ये निश्चित है कि यहाँ का जो वैज्ञानिक है भारत का वो लगा हुआ है और परिपूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं कि उत्पादन कहीं कम नहीं होगा। निश्चित हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती करेंगे और हमें शुद्ध खाद्यान्न देंगे।
0: पुष्पेन जी, अब हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक हैं और हम समझते हैं कि ज्यादातर जो हमारे सैनिक भाई हैं वो कहीं ना कहीं किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, तो एक जवान के लिए किसान कितना महत्वपूर्ण है, इस पर श्री राम प्रकाश जी जो कि फौज से रिटायर्ड हैं, आप अपने विचार रखें।
3: एक जवान के लिए किसान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जवान सड़क पर पहाड़ियों के बीच काफी जगह जो है ऐसी ऐसी जगह रहता है जहां पर राशन की बहुत जरूरत पड़ती है और वहां पे हमारे किसान भाई जो अनेक प्रकार की फसलें पैदा करते हैं वो सेना के अंदर जगह जगह किसी ना किसी तरह भिजवाई जाती हैं और जिससे सेना का भरपूर राशन पानी किसानों की मेहनत से प्राप्त होता है।
0: अब हमारे बीच रिटायर्ड कर्नल श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार आज के परिप्रेक्ष्य में सीमाओं पर जवानों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्या उनकी समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे करते हैं?
4: हम सभी जानते हैं कि हमारा देश चारों तरफ से पहाड़ों और समुद्र और रेगिस्तान और घने जंगलों से घिरा हुआ देश है। हर तरफ हर प्रकार की जलवायु है। उस जलवायु में रहते हुए सेना के एक सिपाही को अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी सेहत को बरकरार रखना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि हमारे इस आधुनिक युग में किस तरह से हमारी सेनाओं को और किसानों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभाना चाहिए, ये बिल्कुल ही साफ और स्वच्छ तरीके से हर एक को पता है। यदि सेना बॉर्डर पे पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। आज हम लोग खुद खुशकिस्मत है कि हमारा किसान पूरे विश्व में अच्छी भूमिका निभा रहा है और खाद्यान्नों से आत्मनिर्भर बनाकर रखा हुआ है इस देश को। उसी तरह के जवान ने भी सीमाओं की सुरक्षा में अपना पूरा योगदान देते हुए आज देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित। हर तरह के प्रशिक्षण उनको प्राप्त करना पड़ता है, चाहे वो माउंटेन हो, माउंटेन वॉरफेयर हो, जंगल वॉरफेयर हो या डेजर्ट वॉरफेयर हो। तो ये दोनों ही तरह से माना जाए कि सेना का जवान

0: और हमारे भारत का किसान, ये वो स्तंभ है जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करते हैं।
1: आज के आधुनिक युग में लगभग सभी काम मशीनों से होने लगे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में हमारे किसानों का क्या योगदान है, इस बारे में हमारे निर्मल यादव जी अपने विचार प्रकट करेंगे।
2: जी, बहुत ही कंटेम्परेरी समीचीन बात है ये। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम कोरोना को याद करें, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़े देश थे, विकसित देश थे, उन सब की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी। सिर्फ भारत एक ऐसा देश था जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी विभीषिका सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डिगी। जितना उत्पादन हमारे लिए जरूरी था उससे कहीं ज्यादा उत्पादन करके हमारे किसानों ने दिया, और आप देखेंगे कि 6.5% से ज्यादा का एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे देश ने करके दिखाया है, और जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। मैं मानता हूं कि आश्चर्य नहीं है, ये सिर्फ हमारा नजरिया था जो बदला है। अब अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था को कितना मजबूती एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, तो भारत जैसे देश की जब हम बात करते हैं तो अगर आप सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक जितने प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर का योगदान होता है तो वो एग्रो प्रोडक्ट होते हैं। एग्रो प्रोडक्ट चूंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं तक जुड़े होते हैं, तो यही वजह है कि भारत के जो किसान हैं वो न केवल हमारे अपने देश की एक विशाल आबादी उसका पेट भर रहे हैं, बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश जिनमें यूरोप, जहां मैंने खुद अनुभव किया है कि बहुत सारी चीजें ना तो वहां के किसान प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको भी हमारे देश के किसान जो है वहां उत्पादन करके उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। तो हम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी आबादी का पेट भरने वाले किसान हैं, और इसीलिए हमको अगर अन्नदाता कहा जाता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक खाद्यान्न का संकट बहुत बड़ा संकट है, एक बड़ी चिंता है देश के लिए। कहीं ये वास्तव में संकट ना बन जाए, यानी वो आपूर्ति पूरी तरह से बनी रहे, वो चेन सप्लाई की जो है वो बनी रहे, उसके लिए बीजों की आपूर्ति हो, किस प्राकृतिक खेती पर लगातार जोर दिया जा रहा है, और इकोनॉमी में किस तरह से शुद्ध प्रोडक्ट की जो बात अभी पुष्पेन जी कर रहे थे, हम सभी लोगों की ये चिंता है कि हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि हमें अपनी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना था। तो इसके बीच में एक संतुलन बिठाते हुए किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारा बुंदेलखंड इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है। यूपी के तमाम अन्य जिलों में भी इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, देश के और इलाकों में भी हो रहे हैं। तो एक संतुलन के साथ प्राकृतिक खेती भी हो, केमिकल पर से हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम हो, धरती की जो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है जिसमें गिरावट आई है उसको भी हम ठीक करें, यानी धरती की सेहत को दुरुस्त करते हुए इंसानों की सेहत भी बढ़िया हो, इसको लेकर किसानों की जो जिम्मेदारी है उसको हमारे देश के किसान निभा रहे हैं। और
1: निर्मल जी, आपकी जो जानकारी है उसके आधार पर लग रहा है आप जैसे किसान भाई अगर हमारे देश में हो जाए तो शायद हम किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं रह सकते।
3: राकेश, हमारे स्टूडियो में जवान भाई और किसान दोनों ही महान हस्तियां मौजूद हैं।
1: हाँ।
3: तो जब जवान की बात आती है तो लगता है कि निश्चित ही कि हमारे जवान भाई सेना में जाके युद्ध करते हैं।
1: हाँ।
3: तो क्यों ना इस युद्ध के अनुभव के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे बीच में जेपी शर्मा जी जो रिटायर्ड कर्नल है, इनसे जानते हैं कि इनका कोई ऐसा अनुभव जो युद्ध से जुड़ा।
0: हम आपको सबसे पहले एक जानकारी जरूर देना चाहेंगे। 1971 की लड़ाई सभी को पता है कि हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ी सशक्त दी थी। उस सशक्त की सबसे बड़ी बात थी कि हमारी सेना उनसे बेहतर प्रशिक्षित थी, हमारे सैनिक उनसे ज्यादा जाबाज और बहादुर थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका जो समर्पण भाव, उसकी वजह से हमारे देश को एक बहुत बड़ी विजय हासिल हुई। ये एक अनुभव ऐसा हृदय स्पर्शी अनुभव रहा है कि जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती थी तो सैनिक भाइयों की वो मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े नजर आते थे। किसी भी तरह की मदद हो, हर क्षेत्र की मदद के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर वो जो कर सकते थे उन्होंने करने का हमेशा अपना जज्बा दिखाया, और ये एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर होता है किसी भी सैनिक के लिए जब हमारे किसान भाई वहां के और सामान्य नागरिक हमारी मदद के लिए तैयार खड़े होते हैं, तो हम सबका हौसला और भी बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसे किसान भाई, उनके और आने वाली जनरेशन हमारी सीमा पर तैनात जवानों की हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं।
1: अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जवान भाई देश की सीमाओं पर मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं, और जब कोई पर्व या त्योहार आता है तो पूरा देश उस पर्व को, त्योहार को मना रहा होता है, तो आप लोग सीमाओं पर रहकर इन त्योहारों का कैसे आनंद लेते हैं?
0: देखिए, पर्व कहीं भी रहिए आप, जब आप अपनों के बीच में होते हैं और परिवार जैसा महसूस करते हैं तो पर्व का उल्लास बढ़ जाता है।

0: हमारे दो परिवार होते हैं, एक तो हमारे घर द्वार जहाँ के हम निवासी हैं वो वहाँ परिवार होता है, दूसरा हमारा परिवार सैन्य परिवार होता है। तमाम प्रांतों से, तमाम गांव से अलग अलग वेशभूषा के रहने वाले, अलग खान पीन बीच में रह के त्योहार मनाने का कुछ और ही उल्लास और उत्साह होता है। जब भी हम सीमा पे होते हैं इस उत्साह में कोई कमी नहीं रखते हैं, तो एक पूरा हिंदुस्तान समावेश हो जाता है जब भी हम कोई सभी पर्व मनाते हैं, बड़ा ही उत्साह से मनाया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, या हमारे गुरु पर्व हो, या भी और भी किसी भी तरह का भी उत्सव मनाया जा रहा हो। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये हम सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एकता का एक बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं।
1: जैसा कि अवसर है स्वतंत्रता दिवस का, तो हमारे जो जागरूक कृषक हैं और जानकारी लवरेज हैं और पूरी मैं समझता हूं कि हर तरह की जानकारी उनको है, तो मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि देश की स्वतंत्रता में किसानों की क्या भूमिका रही।
2: अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो मैं और पहले जाना चाहूंगा 1857। आजादी का पूरा जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं गांव, खेत, किसान और खलियान से ही जुड़ा हुआ था। और पूरा आजादी का जो आंदोलन है, अगर उसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं, लोग जो आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते थे, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन सभी का ताल्लुक गांव से था। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस बुंदेलखंड में आज यहाँ बैठे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने यहीं जंगे आजादी में रहकर एक लंबा समय यहाँ व्यतीत किया और अंग्रेज उनको पकड़ भी नहीं पाए। इस 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किए बिना ये पूरी चर्चा अधूरी है। महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये कोई राजे रजवाड़े की महिला नहीं थी, वो विशुद्ध रूप से गांव से संबंध रखने वाली एक युवा, जिसने जो है आज तक हमारी पीढ़ियों को हमें एक प्रेरणा देती है। और आजादी यानी देश के लिए आजादी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और उसके लिए एक अपना जीवन का उत्सर्ग करना, उसका क्या महत्व होता है, ये बात हमें आज भी जब हम रानी झांसी के किले में जाते हैं, उस जगह पर हम जब पहुंचते हैं तो हमें रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं और हम उस बात को महसूस कर सकते हैं जो काम उन्होंने उस समय किया था। तो 1857 से लेकर 1947 तक का जो एक कालखंड है, ये पूरी तरह से यहां तक किसानों का विद्रोह, चौरी चौरा का जो कांड हुआ ये भी पूरी तरह से किसानों का ही था। गांव के लोगों से विद्रोह की जो अलग थी, और एक अगर घटना हम ना भूलें तो मेरठ से जो पहले स्वतंत्रता संग्राम की जो अलग जगी थी वो भी जो है गांव से ही निकली हुई बात थी। तो इसका चिन्ह अगर हम देखें तो रोटी था, यानी गेहूं जो उपजाता था किसान, उसकी रोटी बनती थी, वो हम सबका भरण पोषण करती थी। अंग्रेजों से लड़ाई का ये प्रतीक बनाया गया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ था कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जवानों से नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई किसानों के माध्यम से लड़ी जाएगी। तो जवान और किसान जब मिले तब जाके जो है एक निर्णायक भूमिका बनी और उसके बाद 1947 में जो हमने आजादी देखी, जो पाई, वो जो है उसकी भूमिका किसानों ने और जवानों ने दोनों ने मिलकर जो है इसका आगाज किया था।
3: और राकेश जी, हाँ जी, इतनी अच्छी जानकारी निर्मल जी ने दी। हाँ। और बात करते हैं रेडियो की।
1: हाँ।
3: कि हमारे जो जवान भाई है,
1: हाँ,
3: सीमा पर रहते हैं,
1: बिल्कुल
3: परिवार से दूर रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि रेडियो का महत्व एक जवान भाई के लिए कितना है।
0: हम सभी जानते हैं कि बिना मनोरंजन के किसी भी व्यक्ति को अपने समय को गुजारना थोड़ा असंभव सा हो जाता है, जबकि वो अपने परिवार से दूर होता है। आप लोगों को मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, सन 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के फौजियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया था, युद्धबंदी थे, उन तक को रेडियो की सेवाएं प्रदान की गई और उनके मैसेज रेडियो के जरिए पाकिस्तान तक उनके परिवारों को दिए जाते थे। उस भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। आज भी हमारा जवान जब सीमा के पोस्ट के ऊपर तैनात होता है, वहां उसको समाचार सुनने के अलावा और भी अपने साहित्यिक जानकारी के लिए और देशी कई अन्य गतिविधियों से जुड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा, सुगम और सरल माध्यम होता है। जवान आज भी उतना ही उपयोग करते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहां पर हमारे टीवी जैसी प्रसारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती।
1: लेकिन पुष्पेन जी, हमारे किसान भाई भी जब खेतों में काम करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि मेड़ पर रेडियो सेट रखा हुआ है, उससे अपना मनोरंजन भी हो रहा है और जो भी जानकारियां है वो भी ले रहे हैं। तो अब हम हमारे निर्मल भाई हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किसानों के लिए रेडियो की क्या भूमिका है।
2: किसान जो है वो शारीरिक श्रम करता है, दिमागी तौर पर उसको ज्यादा तनाव हो सकता है, इसमें रेडियो ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका ये टेंशन रिलीज करने में। तो चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे किसान भाई हो हमारे, या सेना के हमारे जवान हो, या फिर कामगार लोग हो, या फिर मैं तो कहता हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग भी जो है वो भी बिना रेडियो के अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बिना इसके

0: हम अपने काम की गति की तुलना नहीं कर सकते हैं किसी अन्य चीज से।
1: राकेश जी, अब अंत में हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनके विचार जान लेते हैं कि वो चलते चलते और क्या संदेश देना चाहेंगे, तो शुरुआत करते हैं जेपी शर्मा जी से।
2: मैं सभी देश के नागरिकों से ये बात करना चाहूंगा कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं होती है। मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि सेवा है और उस सेवा का महत्व समझना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे जवान चाहे वो भूतपूर्व हो या भी सेवारत हो, उनकी इज्जत जरूर करें।
3: और हमारे जो कृषक भाई हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: संदेश बिल्कुल साफ है, सीमा पर जब जवान मुस्तैद हैं तो खेत पर किसान का मुस्तैद होना उतना ही जरूरी है, तभी देश चल सकता है। तो संदेश यही है कि जवानों का और किसानों का हम सबके दिलो दिमाग में बहुत सम्मान हो, उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे।
3: जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस की आन बान शान, सीमा पर जवान और खेत पर किसान, इस संगोष्ठी में हमारे बीच रिटायर्ड कर्नल श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी, रिटायर्ड सूबेदार श्री राम प्रकाश जी और बहुत ही जागरूक कृषक निर्मल यादव जी और एक और हमारे बीच कृषक अजय कुमार जी, आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार हमारे श्रोताओं के बीच साझा किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हाँ भैया, और अब मौका है कौनऊ लोकगीत देशभक्ति गीत को, तो अब अपन को सुनवा रहे बद्री प्रसाद परदेशी को गाओ भाव जो देशभक्ति गीत।

झर झर झरना खेती करत किसान। इस की धरती है सोन।

हाँ, अब हमारे किसान भैया सुन रहे थे जो देशभक्ति गीत, और जैसो के मौका है, आज है स्वतंत्रता दिवस, और ऐसे मौका पे अपने भारत देश के जो महान लोग भय, जो स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता में जिन्होंने योगदान दो, और जो हमारे बुंदेलखंड के नायक रहे, उनके बारे में बात ना हुई तो कछु अधूरा है। तो अब हम अपने किसान भैया से कहें कि आज के दिन, यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम कछु अच्छी बात अपने जीवन में उतारें, और अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यही है कि हम मृदा स्वास्थ्य,

बढ़ावे के लाने जो जैविक उत्पाद हैं उनको इस्तेमाल करें, जैविक खाद को इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनावे में सबसे बढ़िया योगदान रहे। और अब कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा, तो एक बार फिर से अपन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे कार्यक्रम को पता है, कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड 284128। और अब राकेश भैया को देवा गया, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 6:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

7:20 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सात बजकर 7:31 पर सुनिएगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक संगीतकार।

रात 9:15 पर सुनिए का स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर झांसी नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों की प्रदेश स्तर पर रेडियो रिपोर्ट।

एक बार पुनः आपको याद दिला दें, रात्रि 10 बजे सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों की प्रदेश स्तर पर रेडियो रिपोर्ट। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ ही आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण संपन्न होता है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
3: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
2: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
4: यूपी 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत आनंद राज आनंद की आवाज में। फिल्म का नाम था परदेसी बाबू। गीत और संगीत था आनंद राज आनंद का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: पुनीता बहनी।
0: हाँ कृष्णा भैया।
1: देखो अपनी खेती पाती में खर्च हरदम लगा रहा करा था, कबो कबो तो इस खर्च लगा था कि हम पंचन के देखा ही पड़ा था कि वो खर्च की व्यवस्था हम पंच कहाँ से करी।
0: बिल्कुल भैया, जब हमने सबके सामने इतन की परेशानी आवत है ना कि भैया जो बीज कहाँ से लाई, खाद कहाँ से लाई, पानी अपने खेतवन में कितना लगाई, यह खातिर देखो समय समय पर साल में यहाँ 3 बाजी अपन सरकार जो उन्हें हमका सबका 2,000 रुपया दे थे, जिसे हम अपनी खेती पाती के यहाँ सारे काम जो है वो कर सके थे।
1: बिल्कुल, किसान सम्मान निधि के रूप में हम पंचन के मिला करत हो पैसा, और वह समय मिला था जब अपन जुताई होत रहा था, कटाई होत रहा था, मड़ाई होत रहा था,
0: जब खेती पाती में सबसे ज्यादा जरूरत होते।
1: बिल्कुल बहनी, तो सही बात है।
0: और इसके अलावा भैया देखो, हम सब पंच भाई के यहाँ ये जानकारी जो होती है अपने आस पास अपने खेती पाती से संबंधित उन्होंने बहुत जरूरी होते, तो भैया यही क्रम में सुन ली जाए आज की खबरें।
2: गन्ना किसानों के लिए अहम खबर। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR, IISR और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के बीच गुणवत्तापूर्ण गन्ने के बीज के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्वालिटी शुगर केन के सीड प्रोडक्शन के लिए एडवांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रोग मुक्त, शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का बीज उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही लाल सड़न जैसी गन्ने की प्रमुख बीमारियों से फसल को बचाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर और रोग मुक्त बीज मिलने से गन्ने की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इससे चीनी की रिकवरी बेहतर होने और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह समझौता गन्ना किसानों तक अच्छे बीज की पहुंच बढ़ाने, फसल की उत्पादकता सुधारने और गन्ने की खेती को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: अपुनीता बहनी।
0: हाँ
1: देखो, अपने बीच में अपने घरे दुआरे जोन बा जोन हराहा गोरु है ना, गैया है, भैंसी है, दूध दे वाले हैं, गाभिन है, तो उनकी हरा चारा साल भर कैसे मिले, हम पंच कौन प्रबंध करी, ऐसे कुछ पत कही आज अपने बीच में है।
0: बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए आज की बातें। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन, और भैया वार्ताकार है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।
1: आओ सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं, वहाँ वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड मझरा लखीमपुर खीरी से डॉक्टर आरके सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। जहाँ पशुपालन से जुड़े हैं किसान भाई बहन, पूरे साल हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें।
4: नमस्कार, ये समसामयिक विषय है और मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है। पहला, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु एवं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकांश किसान हमारे देसी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे चारे पर निर्भर रहता है। इन सूखे चारे से कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक पोषक तत्व खनिज मिश्रण वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। प्रचुर मात्रा में हरा चारा एवं पौष्टिक चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पशुओं में उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए एवं विकारों को नियंत्रित रखने के लिए हरा चारा प्रतिदिन आहार में देना अति आवश्यक है। और हरे चारे से कैरोटीन की पूर्ति होती है। दुधारू पशुओं में विटामिन ए हरे चारे से ही पहुंचता है और हरे चारे में पहुंचने के साथ साथ वो पशुओं के माध्यम से फिर मनुष्य के शरीर में भी विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से, वो इसी तरीके से आता है। मुख्य रूप से दलहनी चारों पशुओं की आवश्यकता प्रोटीन की करते हैं और दलहनी और अदहलनी चारों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए जब भी किसान भाइयों को प्राथमिक बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरे चारे का जब भी समावेश करें आहार में तो दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार के हरे चारे का समावेश पशु के आहार में करना चाहिए।
3: जहां हरे चारे की बुआई नहीं कर पाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
4: अभी 15 दिन तक किसान भाई हमारे खरीफ चारे की

0: बुआई कर सकते हैं। और खरीफ में उगाई जाने वाली जो चारा फसलें हैं उसमें मुख्य फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकचरी है, और दलहनी फसलों में लोबिया, ग्वार, ये मुख्य फसलें हैं।
1: तो इनकी कुछ खास प्रजातियां होंगी?
0: हाँ, खरीफ की मुख्य चारा की फसलें, उनकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य प्रजातियों की हम बात करें तो जैसे एक कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, हरियाणा चरी है, हरियाणा चरी 117 नंबर, हरियाणा चरी 260 नंबर, यूपी चरी, पंत चरी 23 नंबर, ये चरी हैं जो कि एक कटाई वाली है। और इनकी अगर हम बुआई करें तो इसमें 35 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको को हरा चारा मिलता
1: है, यानी 2.5 एकड़ में।
0: जी,
1: और एकड़ की बात करें तो लगभग 16 से 20 कुंटल
0: प्रति एकड़ में।
1: और बहु कटाई वाली किस्म,
0: किसान भाइयों अगर हम बहु कटाई वाली किस्मों की बात करें उसमें SSG 988, SSG 989, SSG 855, PC 23, PC 29, ये मुख्य रूप से हैं। और जो बहु कटाई वाली किस्में इनमें भी लगभग इसको हम 3 बार खरीफ के सीजन में कटाई कर लेते हैं, इससे हमको लगभग 110 से 130 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जहां हरे चारे के लिए मक्का लगाना चाहते हैं या बाजरा लगाना चाहते हैं या लोबिया लगाना चाहते हैं तो इनकी प्रजातियां?
0: मक्का की अफ्रीकन टाल प्रजाति, विजय कंपोजिट प्रजाति, मोती कंपोजिट मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। और मक्का तो लगभग साल में 2 से 3 बार की बुआई हो जाती है और उपज जो है इससे 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें जॉइंट बाजरा UUJ4M, TNSC1, FMH3, और इनकी उपज लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति टन प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और अगर लोबिया की बात करें तो लोबिया में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक लोबिया होती है कि सब्जी वाली लोबिया होती है और एक दूसरी लोबिया होती है जो कि चारे वाली। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को चारे वाली की प्रजाति ही बोना चाहिए,
1: जैसे
0: एशियन जायंट है, EC4216 है, बुंदेला लोबिया बहुत फेमस है, 2 बुंदेला लोबिया 1 और EC4216 और UPC 287, ये मुख्य प्रजातियां हैं। और लोबिया की उपज में 2 चीजें होती हैं, इसमें तो फली भी कुछ किसान भाई हमारे चारे के साथ खिला देते हैं और उपज इसमें 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा खरीफ के चारे की बात। जहां रबी में चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहां कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन सी प्रजातियां?
0: किसान भाई, सीजन के हिसाब से और जगह के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से रबी की चारा फसलें जो मुख्य हैं उसमें जई है। जई की जो प्रजाति है कैंट है, OS 6 OS 7, UPO 94 212, बुंदेला जई 822 851, ये मुख्य रूप से जई की प्रजातियां हैं।
1: और बरसीम की?
0: और बरसीम की मुख्य रूप से मेस्कावी हो गई, बरदान हो गई, BL 1 हो गई, BL 10 हो गई, बुंदेला बरसीम 2 हो गई और बुंदेला BL 22, JB 1, JB 2, JB 3, ये बरसीम की उन्नत नस्ल की अधिक उपज देने वाली हमारी चारा की फसलें हैं।
1: रबी हरे चारे में लूसर्न भी है?
0: रबी हरे चारे में लूसर्न बहुत क्षेत्रों में बोया जाता है, खासतौर से बुंदेलखंड रीजन में, और लूसर्न बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको कुछ क्षेत्रों में लूसन या रिजका या कहीं कहीं अल्फा अल्फा भी कहते हैं। अगर लूसन की बात करें तो लूसन की जो मुख्य प्रजाति है लूसन RL 88, Chetak 244, सिरसा टाइप 98, NDRI सेलकान 1, Anand 3, NDRI सेलेक्शन 1 और Anand 3 RL 88, ये मुख्य रूप से है।
1: जहाँ जायद में सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं वहाँ किसान भाई बहन हरा चारा उत्पादन करना चाहेंगे?
0: हाँ, किसान भाई जहाँ पे, क्योंकि रवि खरीफ के साथ साथ जायद भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय अक्सर चारे की कमी हो जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जापानी ज्वार, मक्का या लोबिया हम पर्याप्त मात्रा में लेके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: कुछ ऐसे बहुवर्षीय चारे जो पूरे साल किसान भाइयों बहनों के पशुओं के लिए आहार बने?
0: हाँ, पशुपालक भाइयों देखिए, सफल पशुधन व्यवसाय के लिए वर्ष भर हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ओवरलैपिंग का मतलब किसान भाइयों एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बुआई कर देना और अधिक चारे के लिए मिश्रित खेती करना और तीसरा है खाद्यान्न।

0: किसान फसलों के बीच स्थित जो रिक्त स्थान है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें अतिरिक्त चारा प्राप्त कर सकते हैं, और खाद्यान्न फसलों के बीच के खाली समय में, जैसे कि रवि की कटाई के बाद मई जून के महीने में हमारा और खरीफ की बुआई से पूर्व 60-70 दिन का समय मिलता है, इसमें भी अगर हम मक्का प्लस लोबिया या चरी प्लस लोबिया या बाजरा प्लस लोबिया की मिलवा खेती कर लेते हैं तो लगभग 250 से 300 कुंतल हरा चारा प्राप्त हो सकता है।
1: अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 94155-77915 9415577915 94155-77915।
1: डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ कृष्णा भैया।
3: देखो बतकही तो अपन बहुत होगी, जानकारी भी होगी अपन, लेकिन आज है 15 अगस्त।
4: वैसे जो हम देश प्रेम होते ना, हर आदमी के अंदर पूरा कूट कूट के यहाँ भरा रहा थे, लेकिन जो आज के दिन आवत है यू दिन कुछ विशेष होते और ई अवसर पर अपने देश के प्रेम के रंग जो होते वो कुछ अलगे होते।
3: तो बहनी यह अवसर पे सुना जाए एक देशभक्ति गीत विवेकानंद व्यास के स्वर में।

0: कृष्णा भैया।
1: हाँ पुनीता बहनी।
0: भैया देखो, जैसे हम सब जने अनाज उत्पादन करे थे, कुछ पंच भाई हमारे फूल उत्पादन करते हैं, बागवानी करते हैं, ये इतना कुछ पंच भैया लोग जो हैं वो सब्जी उत्पादन करते हैं, और सब्जी उत्पादन कर करके अपन जो है जीवन यापन करते हैं।
1: तो बहनी, आज के किसान हैं रुद्रपाल सिंह भैया, जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के पाल्हापुर गांव के रुद्रपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, हमारे पास 12 एकड़ जमीन है।
2: सब्जियों का रकबा कितना है इस समय?
3: सब्जियों का रकबा 4 एकड़।
2: तो 4 एकड़ में आप मचान पर सब्जी की खेती के लिए भी जाने जाते हैं?
3: जी हाँ, हमने 2 एकड़ पे मचान की खेती की है।
2: इसकी बुआई कब की आपने?
3: हमने इसकी बुआई दिसंबर के मध्य में कर दी थी, और उसको प्लास्टिक से ढक के,
2: यानी
3: लो टनल बना के किया है।
2: तो कौन कौन सी सब्जियां आपने उगाई?
3: इसमें करेला और तोरई दोनों मचान पे।
2: जमाव कब तक हुआ?
3: जमाव इसका 15 दिन में हो गया था।
2: हाँ, और लो टनल कब तक लगाते हैं?
3: लो टनल हम 15 जनवरी तक लगाए, जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है फिर उसको हम हटा देते हैं। जब तापमान अच्छा हो जाता है तो हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है।
2: तो कोई खास वैरायटी की तरोई और करेला लगाए?
3: हाँ, हमने करेला 2 वैरायटी थी, एक अमनश्री और दूसरा रुसान।
2: मचान पर तरोई और करेला उत्पादन में आप ध्यान में रखते हैं?
3: देखिए, इसको हर हाल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगा देना चाहिए। बीज लगाने से पहले उसको भिगो के और जर्मिनेट करने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें अंकुरण हो जाए।
2: जी।
3: दूसरा ये कि उसको तुरंत लो टनल बना के उसको ढक देना चाहिए, जिससे गर्मी रहे और पौधा तैयार हो जाए।
2: तो पहली फलत कब से चालू हुई?
3: पहली फलत मार्च में स्टार्ट हो गई थी, 4 मार्च को हमने तरोई निकाल दी थी।
2: और करेला?
3: करेला हमारा 14-15 मार्च को निकला है, तब से लगातार उत्पादन मिल रहा है।
2: इस समय क्या स्थिति है गर्मी में उत्पादन लेने के बाद करेला और तरोई में?
3: नहीं, इस समय उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन रेट्स बहुत अच्छे नहीं है। विगत वर्ष में हमने इसको समाप्त कर दिया था।
2: अच्छा,
3: लेकिन इस बार हमने ट्रायल किया है कि इसको रखा जाए।
2: अच्छा, तो पहले आप गर्मी खत्म होने के साथ ही बरसात के पहले

0: ही इसको खत्म कर दें, लेकिन इस बार बरसात भी चलाएंगे,
1: इसको हम बरसात भर चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सितंबर तक चलेगा।
0: लगातार आपको उत्पादन मिल रहा है, तुड़ाई हो रही है?
1: तुड़ाई हो रही है।
0: तो गर्मी में कैसा अनुभव रहा आपका तरोई और करेला का?
1: देखिए, इधर मई से इसके रेट्स काफी डाउन हुए। शुरू में अगर आप देखें तो रेट्स हमारे 8000 रुपए कुंटल तक के रेट शुरुआत हुए थे, फिर मैं 600 रुपए कुंटल पे आ गया। जब इसका अभी तक का हमने एवरेजिंग किया है तो हमारे तरोई का एवरेज 20 रुपए कुछ पैसे है
0: किलो।
1: किलो
0: तो ठीक ही है
1: जी।
0: और करेला में?
1: करेला का उत्पादन तरोई से कुछ कम है और इसका रेट 27 रुपए प्रति किलो। टोटल हमने निकाला कि कितना हमारा उत्पादन अब तक हुआ है और उसमें कितने रुपए आए, उसको हमने डिवाइड करके निकाला है तो उससे रेट निकला है।
0: मचान पर जब करेला और तरोई का उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसका अंतरण क्या रखते हैं? क्या रेज पर बुआई करते हैं?
1: जी हाँ, इसकी बेड बनाते हैं, ड्रिप पे करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद मल्चिंग करते हैं, बनाते हैं, उसमें बीज की बुआई करते हैं।
0: तो लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी?
1: पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट।
0: और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: ये सब बड़ा आसान है, हमारे पास ड्रिप सिस्टम है।
0: हाँ।
1: और हम सारे सॉल्युबल फर्टिलाइजर देते हैं,
0: यानी जल विलेय उर्वरक।
1: जी,
0: फर्टिगेशन के माध्यम से।
1: जी, फर्टिगेशन माध्यम।
0: पानी और खुराक साथ साथ?
1: साथ साथ देते हैं।
0: तो इसका अंतरण क्या होता रहता है?
1: ये हम लगातार हर तीसरे दिन में एनपीके, फिर एनपीके के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका एक शेड्यूल बना रखे हैं। तो हमारा 2 दिन के गैप में हम लगातार इसको देते हैं
0: और उसका असर फलत पर दिखता है,
1: बहुत अच्छा आता है।
0: कुछ रोग दोख और कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आती होगी?
1: हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस समय ब्लाइट आती है
0: जी,
1: तो उस समय हमको अच्छे फंगीसाइड की जरूरत होती है और अच्छा फंगीसाइड हमको स्प्रे करना पड़ता है। फल मक्खियां लगती हैं, इसमें फल मक्खियों का प्रबंधन करना पड़ता है।
0: तो क्या कुछ आईपीएम के उपाय भी अपना रहे हैं?
1: जी हाँ,
0: फल मक्खी ट्रैप लगाते हैं?
1: ट्रैप लगाते हैं। ट्रैप से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हमको स्प्रे भी करना पड़ता है।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक होता होगा तब?
1: जी,
0: ऐसी उम्मीद है। इस समय भी निकासी चालू है?
1: जी हाँ, इस समय निकासी चालू है। देखिए, जितना उत्पादन हो चुका है अब उतना उत्पादन तो नहीं होगा,
0: लेकिन अगर अभी तक के उत्पादन का आंकड़ा निकालें
1: जी,
0: तो अब तक कितनी लागत गिरी, कितना तक उत्पादन लिए और आपका मुनाफा अब तक कितना हुआ?
1: देखिए, अब तक का हमारा जो तरोई का है वो 150 क्विंटल क्रॉस किया है 1 एकड़ में
0: जी,
1: और उसका रेट 20 रुपए के करीब में है।
0: हाँ।
1: और वहीं 125 क्विंटल करेला किया है जिसका रेट 27 रुपए है।
0: तो लगभग करीब है?
1: करीब करीब है दोनों का।
0: तो लगभग 3 लाख तक पहुंचे?
1: 3-3 लाख पर एकड़ इसमें आया। और लागत हमारी
0: हाँ,
1: तरोई में थोड़ी कम है, करेले में ज्यादा है।
0: लेकिन कुल लागत की बात करें तो कितनी लागत गिरती है साल में?
1: लागत 2 लाख रुपए दोनों में मिला के।
0: तो आपकी बचत हुई कितनी?
1: बचत हमारी दोनों फसल में 4 लाख रुपए की।
0: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हमारी यही सलाह है कि यदि सब्जी की खेती करनी है तो हमको बहुत ही अर्ली तैयारी करनी चाहिए।
0: या विलंब से?
1: विलंब से भी की जा सकती है, लेकिन अर्ली के चांसेस बहुत ज्यादा है। या तो फिर लेट किया जाए, क्योंकि अब जो आएगी सब्जियां उनका रेट ठीक रहेगा।
0: और कौन कौन सी बारीकी रखें?
1: बीज का चयन ठीक करें, बीज का शोधन करें, कीड़े लग जाते हैं कभी कभी जड़ों में, उसका प्रबंधन करें, देखते रहें कि उसमें क्या बीमारी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: और रकबे में क्या कर रहे हैं आप 10 एकड़ में?
1: और हम धान, 2 एकड़ में गन्ना और सरसों, गेहूं, ये सब हमने किया है। और हमारा 2.5 एकड़ का एक मछली का तालाब भी है।
0: अच्छा। और तो कुछ औषधि खेती भी कर रहे हैं?
1: हाँ, 2 एकड़ में हमने औषधि की खेती की है, जल ब्रह्मी।
0: तो कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी ठीक है।
0: साल में कितनी बचत हो जाती है?
1: साल में 10 लाख रुपए के ऊपर ही बचत हो जाती है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 77-55-85-76-99।
0: और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
1: जब मैं खेती में आया तो उद्यान विभाग के संपर्क में आया और उनसे काफी जानकारी की, सरकारी योजनाओं का हमने लाभ लिया। खास तौर पर जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है वो बहुत ही खेती को आसान बनाती है, जिसमें सिंचाई हम जितनी चाहे

0: सकते उतनी दे सकते, फर्टिगेशन जितना हम चाहते उतना कर सकते, और अगर किसान भाई इसका लाभ ले तो उन्हें भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है।
1: रुद्रपाल सिंह भैया आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: पुनीता बहनी।
6: हाँ कृष्णा भैया।
5: देखो अपन किसान बाणी कार्यक्रम कैसा लगा पंच भाई के, इकरे बारे में अगर वो अपन पाती लिखा चाहें और अपन सुझाव देवा चाहें तो पता बता दी जाए।
6: भैया हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
5: अब कुछ पंच भैया ईमेल के माध्यम से अगर सुझाव दे चाहते हैं या सुझाव कुछ मांगा चाहते हैं तो वो पता है farmandhome@gmail.com।
6: यही के साथ भैया अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लेन जाए आज्ञा।
7: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार एकांश लखनऊ की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 7-8 वर्षों में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
2: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को

0: मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जवान इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय का नहीं बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जनभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अश्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को आज अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हरियाली तीज का त्योहार आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्रावण शुक्ल तृतीया पर ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल से पखवारे पर चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हुआ तो श्री राम जन्म भूमि मंदिर परिसर में रामलला के विग्रह को परिसर का भ्रमण कराया गया। इसी के साथ प्रमुख मंदिरों में सिया राम के चल विग्रह और स्वरूप रथों पर सुशोभित होकर मणि पर्वत स्थल पहुँचे। वैदिक रीति से पूजन के बाद विग्रहों को विशालकाय वृक्षों पर पड़े झूलों पर सुशोभित किया गया और फिर श्रद्धालुओं ने भगवान के विग्रहों को झूला झुलाकर और मधुर उपासना के गीत से भक्तिमय वातावरण सृजित कर दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8

0: बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत, टेकचंद और साथियों के स्वर में।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला देशभक्ति लोकगीत हर प्रसाद कुशवाहा के स्वर में।

0: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसलन में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
1: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
0: अरे सच भैया?
1: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ,
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
5: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
4: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
6: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला देशभक्ति लोकगीत मुन्ना मासूम और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये बुंदेली देशभक्ति गीत सुशीला देवी के स्वर में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम देशभक्ति लोकगीत रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में।

इसी के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
1: नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित बहनों और भाइयों, देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का यह दिन उन लाखों वीरों के संकल्प को स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीर सपूतों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है,

प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश बीमारों से देश की ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, जीएसडीपी 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। विमेन वर्कफोर्स की सहभागिता 3 गुना से अधिक हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में प्रदेश ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव के माध्यम से 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। 4 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण करने के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट पिछले 9 वर्ष में 19% से घटकर 3% रह गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हुई है। अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान योजना से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी आच्छादित है। विगत 9 वर्षों में 65 लाख से अधिक गरीबों को एक पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल,

इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है।

0: शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई, 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है, प्रारूप में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% से अधिक हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को, उनके परिवार के सदस्यों और बटाईदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 16 लाख किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया गया है। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत का संरक्षण भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता को गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान कराने के लिए युवाओं को नई यूथ पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो, डबल इंजन सरकार की ये संकल्प दृष्टि है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प है। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

नमस्कार दोस्तों, 8:15 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देशभक्ति फिल्म संगीत, और मैं हूं इस वक्त आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन उन अनगिनत वीरों को नमन करने का है जिनकी शहादत की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अगले 30 मिनट तक हम डुबकी लगाएंगे भारतीय सिनेमा के उन सुरीले नगमों में जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में देश प्रेम की अलग जगाई है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस कालजयी गीत से जो आज भी हर भारतीय की आंखों को नम और सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। फिल्म हकीकत से गीतकार कैफी आजमी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत मोहम्मद रफी की बुलंद आवाज में।

حسن اور عشق دونوں کو رسوا

कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मोहम्मद रफी की आवाज का ये जादू आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, आजादी केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, ये हमारे देश की मिट्टी और यहां के मेहनती लोगों से जुड़ना भी है। 60 के दशक में जब भारत निर्माण की नई राह पर चल रहा था, तब फिल्म उपकार के इस गीत ने हर किसान और जवान का हौसला बढ़ाया था। आइए सुनते हैं, मनोज कुमार पर फिल्माया, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया ये नगमा और गुलशन बावरा का लिखा ये गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं हूं इस वक्त आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा। साथियों, स्वतंत्रता दिवस का ये खास नगमों भरा सफर जारी है। दोस्तों, पुराने दौर की मिठास के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं 90 के दशक के उस दौर में जब मणिरत्नम की फिल्म रोजा आई थी। एआर रहमान के अद्भुत संगीत और हरिहरन की मखमली आवाज में रचा बसा ये गीत भारत की विविधता और इसकी अखंडता को बखूबी बयां करता है। आइए सुनते हैं फिल्म रोजा से ये सदाबहार फिल्मी नगमा, जिसे गीतबद्ध किया है पीके मिश्रा ने।

भारत हमको जान से प्यारा है, उजड़े नहीं किसी का चमन, ऐसा देश हमारा है। दोस्तों क्या खूबसूरत बोल हैं, एआर रहमान का संगीत और हरिहरन की गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। दोस्तों जब बात देश के लिए जज्बाए शहादत की हो तो शहीद आजम, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में एआर रहमान का संगीत और सोनू निगम, मनमोहन वारिस की आवाज में ये नगमा क्रांति और आजादी के जुनून को बखूबी बयां करता है। आइए सुनते हैं रूह को गर्मा देने वाला ये ऐतिहासिक फिल्मी गीत।

दोस्तों, इन सरफरोशों की कुर्बानियां ही हमारी आजादी की असली नींव है। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम की घड़ी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न बिना ढोल की थाप और उमंग के अधूरा सा लगता है। तो कार्यक्रम का समापन करते हैं उस सदाबहार और जोशीले गीत के साथ जो आज भी भारत के हर गांव, शहर और गली की शान है। फिल्म नया दौर से ओपी नैयर की धुन पर मोहम्मद रफी और बलवीर की आवाज में ये देश है वीर जवानों का।

दोस्तों, आज के फिल्म संगीत के इस विशेष स्वतंत्रता दिवस अंक में बस इतना ही। इस आजादी को संभाल कर रखना और आपस में भाईचारा बनाए रखना ही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपका दोस्त दीपक शर्मा अब आपसे इजाजत लेता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में

0: میزبان شری لنکا کے خلاف پہلے میچ کے پہلے دن کا کھیل سماپت ہونے تک دو وکٹ کے نقصان پر 288 رن بنائے. اب سماچار وستار سے. راشٹر آج 80واں سوتنترتا دیوس منا رہا ہے. اس اوسر پر پردھان منتری نریندر مودی نے لال قلعہ کے پراچیر پر دھوجاروہن کر مہتوپورن گھوشنائیں کی. اس اوسر پر پہلی بار راشٹریہ گیت وندے ماترم کا گائن ہوا.
1: آزادی کے بعد 15 اگست لال قلعے پر پہلی بار وندے ماترم گونج رہا ہے. वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है.
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी. श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया. श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है.
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है. और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया.
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट.
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया. इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया. प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई. वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की. सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया. इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष

0: अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका की उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिव

0: शिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led

0: the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai parmanu urja, nuclear energy. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट

छांव में खड़ा पूरा झांसी शहर और गांव एवं झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से गूंजते आजादी के तराने, आज पूरा देश उत्सव में डूबा है। आइए महसूस करें इस ऐतिहासिक सुबह की जीवंत ऊर्जा को। सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं झांसी महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय श्री गौरांग राठी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सूरज प्रसाद वालका इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया एवं सभागार में देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया।

0: इसी बीच जिला कलेक्ट्रेट में वहां मौजूद जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
1: तेरी सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं हमारे सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस इतिहास का सबसे बड़ा और पवित्र दिन है। इस दिन 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हुआ था और हमारे देश को आजादी मिली थी। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा हर दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की एकता और अखंडता मजबूत रखने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत।
2: तो आइए हम आमंत्रित करते हैं अपर जिलाधिकारी महोदय अमित राज साहब को, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं।
3: आज के भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की अध्यक्ष समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के अध्यक्ष और जनपद के मुखिया जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय एवं मेरे साथी अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं इनके साथ ही इस भवन में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सर्वप्रथम आप सभी को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मंच का, इस स्थान का प्रयोग मैं करना चाहती हूं उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने कुछ, जिनके नाम हमें पता हैं और कई सारे ऐसे जिनके नाम ना किसी पुस्तक में है ना किसी की जुबान पे हैं, पर वो काल के भाल पर अपना नाम लिख करके गए हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया है इस उस यज्ञाहुति में जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये स्वतंत्रता मिली है, जिसके कारण हम गर्व, गौरव और उत्साह से इसको मना पा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। धन्यवाद।
2: समय के पाबंद कार्य के धनी हमारे सबसे लोकप्रिय अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय जी से और निवेदन करेंगे, साथ में भी दो लाइनें जरूर सुनाएंगे। बड़ी अपेक्षा है आपसे, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं।
4: 15 अगस्त के दिन आज सभी को यहाँ उपस्थित सभी को बधाई देते हुए बस अपनी बात पंक्तियों के माध्यम से सबसे पहले इस भारत देश की मिट्टी पे चार पंक्तियां और उसके बाद फिर भारत देश की इस झंडे पे।

0: अब जिला कलेक्ट्रेट सभागार से जिला अधिकारी महोदय अपने उद्बोधन के साथ।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित एडीएम ई साहब, एडीएम एफ आर मैडम, एडीएम जे साहब, एडीएम नमामी गंगे साहब, एसीएम साहब, हमारे सभी शीर्ष अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट परिवार के सभी बंधुगण, सदस्यगण, स्कूल से आए सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, विभिन्न सैनिक बल से जो यहाँ पे हमारे होमगार्ड और पुलिस बल से मौजूद हैं, ऐसे सभी वीर पुलिस कर्मचारीगण और मीडिया के सम्मानित बंधुगण, आज हम पूरे देश में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की थीम है। इनफैक्ट इस बार इस थीम के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है वंदे मातरम के 150वां वर्ष, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की महत्ता। तो जो थीम चले जाते हैं हर साल, तो ये इस भाव से होता है कि इन स्तंभों पर, इस थीम पर विशेष जोर हो। विशेष तो सर्वप्रथम आज हमने सुबह राष्ट्र जो हमारा गीत है वो गाया भी सबने मिलकर सामूहिक रूप से। तो राष्ट्रगीत हमारा एक अमर मंत्र की तरह था, जिसने साल दर साल, दिवस पर दिवस, जब भी स्वाधीनता की जो हमारी लड़ाई थी उसकी लौ थोड़ी सी धीमी पड़ती तो उसको पुनः प्रज्वलित करने का और दिलों में साहस जगाने का वो काम करती थी। तो राष्ट्रगीत के लिए जो हाल ही में ये निर्णय लिया गया शीर्षम सर से की वो भी हमारी सेलिब्रेशन का भिन्न अंग होगी। तो केवल और केवल इस उद्देश्य से है कि वही मूल मंत्र हमारे लिए भी काम करे और लगातार उसी स्पीड से, उसी जोर से और उसी शक्ति से हम लोग भी उसी प्रकार से आगे बढ़े, इस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस मूल मंत्र से, इस अमर मंत्र से मोटिवेट होकर आगे लेकर गए थे और कठिनतम परिस्थितियों में हमको स्वतंत्रता दिलाई थी।
0: श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर जहां से 1857 में उद्घोष हुआ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये छात्राएं वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करती हुई ऐतिहासिक किले की प्राचीर से।

0: इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया और साथ ही शांति के प्रतीक सफेद कबूतर खुले आसमान में छोड़े गए।
1: शांति का संदेश मुक्त गगन में उड़ान भरे पक्षी, जीवों पर दया, संवेदनशीलता।
0: झांसी दुर्ग की प्राचीर से जिलाधिकारी महोदय अपने विचारों के साथ।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इस ऐतिहासिक दुर्ग के प्रांगण में उपस्थित

0: आदरणीय वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजन, वीर शहीद सैनिक परिवारजन, सम्मानित अधिकारीगण, समस्त सम्मानित नागरिकगण, सम्मानित मीडिया बंधुगण, माताएं बहनें, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस शौर्य भूमि कर्म भूमि से, झांसी के इस ऐतिहासिक दुर्ग से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह किला केवल पत्थरों और प्राचीरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संकल्प का प्रतीक है। इसकी दीवारें आज भी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के शब्दों में, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज तिरंगे को गर्व से लहराता देखकर हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। हमारी स्वतंत्रता हमें विरासत में अवश्य मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान, समानता और न्याय के साथ जीवन जी सके। साथियों, 80वां स्वतंत्रता दिवस समर्पित है दो स्तंभों के आधार पर, अमर मंत्र वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह के अवसर पर और विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की क्या महत्ता होगी इस स्तंभ पर। इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम इन दोनों ही स्तंभों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और 150वां जो सालगिरह है अमर मंत्र वंदे मातरम की, राष्ट्रीय गीत की, इसमें केवल यह प्रयास किया गया है कि हम इस मूल मंत्र को एकात्म करें, अपनी आत्मा के साथ जोड़ें। इसलिए साल दर साल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, उन्हें ओज से भरा, जिससे कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहे और अंततः हमें स्वतंत्रता दिलाई। साथ ही साथ यह विकसित भारत 2047 का संकल्प हमारी युवा शक्ति के ज्ञान, नवाचार, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम से ही साकार होगा। यह भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है, यह संकल्प आज पूरे भारत में लिया जा रहा है। आज भारत विज्ञान, शिक्षा, कृषि, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कहीं हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तो कहीं किसान देश का अन्न भंडार भर रहे हैं। वैज्ञानिक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शासन प्रशासन के भी सभी अंग लगातार और परिश्रम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बेटे बेटियां हर क्षेत्र में राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। फिर भी हमारे सामने असीम चुनौतियां हैं, उनका मिलकर हमको सामना करना है। विशेष रूप से हमारे युवाओं को ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम के बल पर नए भारत का निर्माण करना होगा, ऐसा हमको संकल्प लेना होगा। आइए रानी लक्ष्मीबाई की इस पवित्र भूमि पर हम संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, बेटियों को समान अवसर देंगे, पर्यावरण बचाएंगे और जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर भाईचारे को और मजबूत करेंगे। जिस धरती ने कभी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का दम में संकल्प लिया था, उसी धरती से आज हम कहें हम भारत की स्वतंत्रता, गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सदैव रक्षा करेंगे। अंत में मैं अपना वक्तव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों से, जो हमको राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसका स्मरण कराती है, अंत करूंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
1: साथियों, आज जहां से बिगुल बजा था कि हम झांसी नहीं देंगे, आज उसी प्राचीर से हमारे बीच में हमारे देश की वो हस्तियां हैं जिनसे हम मुखातिब कराते हैं आप सबको। और सबसे पहले हम,
2: मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड कमोडोर वीएस बबेले विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि झांसी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना जीवन और अपना यौवन देश को दिया है, उनका सम्मान किया।

0: किया है, इसके लिए हम झांसी वासियों को, झांसी प्रशासन को, सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और हम चाहते हैं कि विकसित भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, हम सब देखें और उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहें। हम अपना जीवन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करते रहें, उसमें योगदान करते रहें। जहां पे जो काम कर रहे हैं, अगर किसान है तो खेत में, व्यवसायी है तो अपनी दुकान पर, और सैनिक सम्मान करते हुए हम देश के सभी को शुभकामनाएं कहते हैं। जय हिंद।
1: मैं ग्रुप कैप्टन मनोज श्रीवास्तव झांसी का वासी हूं और मेरी चार पुश्तें यहां से करीब 1800 से रह रही हैं। मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं और यहीं रहूंगा मरते दम तक। मेरा पहले तो सब झांसी वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सिर्फ एक ही संदेश है इस देश का, हर इंसान को अपने अंदर पहले ये झांक के देखे कि अगर वो देशभक्त है तो उसने सिर्फ एक ऐसा कौन सा काम किया है जिससे खुद का भी सर ऊपर हो और इस देश का भी ऊपर हो और हमारे झांसी वासियों का भी सर ऊपर हो। तो कोई ऐसा काम करिए, सिर्फ एक, उस अगर आप करेंगे तो पूरे देश की तरक्की होगी और हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी अचीव होगा। पहले तो ये समझना होगा कि जब हमने आज़ादी ली तो कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद सैनिकों ने कितना बलिदान दिया। ये नहीं कि राष्ट्रभक्त सिर्फ सैनिक होते हैं, या हर कोई राष्ट्रभक्त है जो इस देश के लिए छोटा सा भी कुछ करे राष्ट्रभक्त है। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं इनकी बहुत बड़ा योगदान होता है, अगर ये नहीं तो इनका काम कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा तो यही संदेश है कि हमारी झांसी को जितने हमारे झांसी वाले हैं वो साफ रखें और पूरे देश वाले सिर्फ एक काम करें जो देश की तरक्की के लिए हो। जय हिंद।
2: जय हिंद सभी को। मेरा नाम उमेश सक्सेना है, मैं भारतीय नौसेना से 2012 में एज ए PLP रिटायर हुआ था। मुझे आज यहाँ पर जो सम्मान दिया गया है वो 1999 में जो कारगिल युद्ध लड़ा था, तो मेरा भारतीय नौसेना पोत रंजीत, हम ऑफ कराची थे और हम वहाँ पर कराची से कुछ ही दूरी पर थे जहाँ पर हमारे साथ और भी हमारी सबमरीन्स और कुछ और शिप्स थे, तो उसके उपलक्ष्य में आज मुझे सम्मान दिया गया है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा झांसी की जनता का, झांसी के प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर यह सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद।
3: सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी झांसी, कमांडर महेश कुमार श्रीवास्तव। मैं यहां से सभी देशवासियों को और झांसी के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जो संदेश युवाओं को जाता है वो ये है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने भारत देश में जन्म लिया और आज 80वें वर्षगांठ पर हम इस समारोह को मना रहे हैं। देश की प्रति हमारी भावना सदैव बहुत ही निर्मल और हमेशा सर्व कुछ न्यौछावर करने वाली होनी चाहिए, यही मेरा संदेश है। साथ ही मैं जिला प्रशासन को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी भूतपूर्व सैनिकों को बहुत उचित सम्मान दिया और उनकी तरफ से दिए गए संदेश से हम सदैव प्रेरित रहेंगे और उनके उम्मीदों पर सदैव खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
4: मैं नायब सूबेदार एस के शुक्ला, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से, आज 15 अगस्त का शुभ अवसर पे मैं सभी भूतपूर्व सैनिक अपने झांसी की वीर नारियों को अपने कार्यालय की ओर से हजारों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में जो हमारा कार्यालय भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और उनकी पत्नियों के लिए जो सेवा कर रहा है, मेरे ख्याल में अभी और हमें मेहनत करनी है और इन लोगों को और भी सकुशल और बहुत ही अच्छे, जो कि चाहे वो सैन्य समस्या हो और चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, दोनों को हल करना अति आवश्यक है। और शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरा कार्यालय उसकी ओर अग्रसर है।

0: और आज जिलाधिकारी महोदय ने जो कारगिल और जो वीएसएम साहब लोगों को सम्मान दिया है, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं और सभी भूतपूर्व सैनिकों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: नाम हमारा संतोष कुमारी भदौरिया, मऊरानीपुर से है। अमर शहीद की पत्नी है। हमारे हस्बैंड शहीद हो गए थे 11 अगस्त 1995 में। मैं शहीद हो गए थे। हमें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है, स्वर्ण चक्र से सम्मानित थे। और इधर आके हमें बहुत अच्छा लगा। सब लोगों के इससे हम आते हैं, हर जगह बुलाते हैं, बहुत हमें योगदान भी दिया जाता है, हम बहुत खुश होते हैं। हम उन लोगों के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं जिनने हमें आकर में इतनी आजादी दी है। उन्हीं की वजह से हम लोग इधर रहते हैं। लक्ष्मीबाई को हमारी तरफ से, महारानी को बहुत बहुत सा धन्यवाद।
2: आप नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: कि सब लोग लक्ष्मीबाई की तरह बनो, अपना गर्व से रहो कि हम झांसी के लक्ष्मीबाई की वीरांगना नगर में रहते। किसी को अच्छे से अपना संपर्क रखो, किसी से कुछ नहीं। जो अपना अच्छा बनेगा करोगे, अच्छा करोगे अच्छा देखोगे। लक्ष्मीबाई ने अच्छा काम किया, उनको दुनिया याद कर रही है आज के दिन कि उनने कितना अच्छा कदम उठाया। ऐसी सब लोग अच्छे से रहो, कदम उठाओ, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ।
2: इस अवसर पर झांसी किले में आए कुछ साथियों से, जिनमें पर्यटक और छात्राओं से, हमारे साथी विपिन विहारी तिवारी ने बातचीत की। आइए सुनते हैं।
3: आज क्या है, आज आप यहाँ किले के पर किस लिए आए?
4: सर, आज का जो महोत्सव है उसको मनाने के लिए हम लोग आए हैं रानी लक्ष्मीबाई किले पे। आज जो भव्य कार्यक्रम यहाँ हुआ है, सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कार्यक्रम करता थे सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बरसात बड़ा अच्छा लगा, जब से देश आजाद हुआ उससे आज शायद पहला मौका मिला है, सौभाग्य है आज हमारा कि जो इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो पाए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाए, किले पे आके मनाए तो सर पूरा जीवन उद्धार हो जाएगा।
3: बिल्कुल,
4: बड़ा अच्छा लगा।
3: और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जैसे आजादी हुई थी और आज के समय में आप क्या महसूस कर रहे हैं?
4: सर आज तो हम लोग खुले आजाद हैं, सर बिल्कुल आजाद हैं, और कहीं से किसी का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और यहाँ आके तो सर इतना महसूस, अच्छा महसूस कर रहे हैं कि शायद जीवन का आज ये बहुमूल्य दिन है मेरा। करता हूँ कि हर पर्व इसी किले पे मंत्र है हम लोगों का। और बाकी सर मैं एक युवा लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो बाजारों में जो मिलावट चल रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम और आप उससे बचें और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को अपनाएं। तो ये हमारा जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती चली जा रही है। तो उसको ये संदेश है कि दोस्तों जितना हो सके वो आयुर्वेदिक पे आ जाइए आप लोग, जिससे अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य हम और आप बना सकें।
3: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: गंभीर सिंह कुशवाहा फ्रॉम जालौन से आया हूँ बॉस मैं।
2: साथियों, आज हम झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर आए हुए हैं और आप सबको ज्ञात है कि आकाशवाणी झांसी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ का जो सुरम्य वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य, इस किले की प्राचीर से जब हम झांसी को निहारते हैं तो सुदूर जो पर्वत श्रृंखलाएं और बस्ती हमारी झांसी के सौंदर्य को बयां करती है। और आज इस किले से यहाँ एनसीसी कैडेट्स, हमारी छात्राएं विभिन्न स्कूलों से आई हुई हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर उनको आज कैसा लगा यहाँ आकर के।
5: मैं अनुष्का प्रजापति हूँ, मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। मैं LMT स्कूल में लोकमान्य तिलक में पढ़ती हूँ। 15 अगस्त मनाने हम लोग किले पे आए थे तो हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे झंडा चढ़ाया गया।
6: My name is Chaya Verma. I study in class 12th B. My school name is LMT Inter College. So today is Happy Independence Day. आज Happy Independence Day है। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त पे देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 15 अगस्त पे झंडा देखा और यहाँ लहराता हुआ झंडा देखा तो अलग ही फीलिंग आती है यहाँ की। और यहाँ के कुछ लोग भी आए हैं और हम NCC कैडेट, और मैं यूनिटी और डिसिप्लिन सबको रखनी चाहिए पर यहाँ पे कुछ लोग रखते नहीं हैं, गंदगी भी फैला रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी आए और

0: जैन, मेरा नाम दिव्या प्रजापति है, मैं कक्षा 12th में हूँ। हमारे स्कूल का नाम लोकमान्य तिलक प्रजापति है। मैं NCC कैडेट हूँ जो अनुशासन एवं एकता में रहना सिखाता है। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई किले पर आए और हम लोगों ने झंडा का जो लहरा होता है वो हमें सिखाता है कि हमें अपने जो बलिदान हुए बापूजी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको याद कर कर अब इतना खुशी होना चाहिए कि हम इस किले पर आराम से घूम रहे हैं और एक साथ आराम से मिल रहे हैं, जो पहले आज़ादी नहीं थी जो अब हम पा चुके हैं।
1: मेरा नाम तमन्ना प्रजापति है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ।
2: मेरा नाम अंशिका प्रजापति है, मैं नाइन्थ क्लास से हूँ और आज हम आए किले पे घूमने के लिए। यहाँ पे घूम कर तिरंगा लहर रहा था तो बहुत अच्छा लगा।
3: मेरा नाम अंजलि प्रजापति, मैं 12th B की छात्रा हूँ। मैं LMT कन्या इंटर कॉलेज झांसी में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम भूमिका वर्मा है, मैं क्लास 7C से हूँ और मेरे को किले पे आके अच्छा लगा।
5: माई नेम इज़ छाया वर्मा, आई स्टडी इन क्लास 12th B। तो मैं एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए।

इसके साथ ही झांसी महानगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर हुए कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न हुई। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग जगरूप सिंह का था, प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। अब दीजिए जगरूप सिंह को जाने की अनुमति, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर झांसी नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था जगरूप सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार। इस फिल्म का हीरो एक फौजी है जो अपनी निजी जिंदगी में भी जंग लड़ता है।

सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी

फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर आए अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एलओ

जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चूला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है।

साल 2007 में अमृत सागर ने युद्धबंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लुथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन।

साल 2004 में निर्देशक अनिल शर्मा ने बनाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल।

साल 2005 में आई फिल्म टेंगो चार्ली। ये फिल्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के संघर्ष पर आधारित है जो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त और सुनील शेट्टी वगैरह।

साल 2019 में आदित्य धर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य सितारे थे विकी कौशल और यामी गौतम।

साल 2021 में निर्देशक विष्णु वर्धन लेकर आए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी शेरशाह। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी। साल 2020 में भारत की पहली महिला फौजी पायलट के जीवन पर शरण शर्मा ने एक फिल्म बनाई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इस फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाई थी जानवी कपूर ने। साल 2021 में एक फिल्म आई भोज द प्राइड ऑफ इंडिया। सन 1971 के युद्ध में भोज में इंडियन एयरफोर्स की एयरस्ट्रिप को 72 घंटों में 300 स्थानीय महिलाओं के जरिए तैयार करने के करिश्मे पर आधारित थी ये फिल्म।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें हमने की जिनमें हीरो को फौजी दिखाया गया है या ऐसा कथानक है जिसका ताल्लुक भारत की सीमाओं और उसकी रक्षा से है, युद्ध से है। ऐसी फिल्मों का सिलसिला बहुत लंबा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने मुख्य फिल्मों का जिक्र किया और उनके गाने आपको सुनवाए।

0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों की प्रदेश स्तर पर रेडियो रिपोर्ट, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: अगस्त 2026 सुबह की पहली किरण ने जब धरती की देहरी पर दस्तक दी तो आकाश की ओर उठता हुआ तिरंगा जैसे मुस्कुरा पड़ा। तिरंगा जो स्वयं में समेटे है सदियों का इतिहास, उसकी केसरीय पट्टी पर बलिदानों की अग्नि जल रही है, सफेद पट्टी में शांति का सपना सांस लेता है और हरी पट्टी में भविष्य की उम्मीदें अंकुरित होती है। मध्य में घूमता अशोक चक्र समय का वो पहिया है जो रुकना नहीं जानता। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर भारतीय आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को प्रणाम कर रहा है, उन अमर बलिदानियों को नमन कर रहा है जिनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ। आजादी का ये जश्न पूरी भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया गया। विवरण के साथ हैं हमारी सहयोगी डॉक्टर शिवा राकेश।
2: लखनऊ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों पर 80वें स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया गया, इस बारे में विवरण उपलब्ध कराया हमारे सहयोगियों राघवेंद्र सिंह और ज्योति चंद्रा ने।
3: हर वर्ष की तरह इस बार भी RDSO मानक नगर में बड़ी भव्यता, गरिमा और राष्ट्रीय भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को मनाया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालयों द्वारा देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गयी। इसी क्रम में मानक नगर विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इसी तरह विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इन बच्चों ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयी। केंद्र पर इस पुनीत दिवस को कैसे मनाया गया, इसका ब्यौरा देने वाले हमारे सहयोगियों डॉक्टर सुशील।

0: कुमार राय और मनीष कुमार की रिपोर्ट को स्वर दे रही हैं वैशाली जौहरी।
1: आकाशवाणी लखनऊ के परिसर में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर केंद्राध्यक्ष श्री आर बी सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरजू महाराज कथक संस्थान के कलाकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष श्री आर बी सिंह द्वारा कहा गया,
2: इस तिरंगे राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए मेरे ओर से आप सभी को 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये राष्ट्रीय पर्व ही तो है जो हमारे जीवन में उल्लास लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं और हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। आज हम उन सभी वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। हमारे आजादी के मतवालों ने जो सपने देखे थे उनके सपनों को हम साकार करें।
1: तत्पश्चात कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती सुमोना एस पांडे द्वारा स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई।
3: राष्ट्र ध्वज को नमन के साथ मैं सभी हमारे अधिकारियों, हमारे सभी साथियों का स्वागत करती हूँ इस पावन अवसर पर। और आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का आज है, हम मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो देश के शहीदों, वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, वो सिर्फ एक दिन का याद करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज के दिन को इसी रूप में मनाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमें सिर्फ उनकी बलिदानी को याद नहीं करना है, हमें इस आजादी को बनाए रखने में भी अपना योगदान देना है।
1: इसी क्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत स्नेही श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अपने देशभक्ति लोक गीतों द्वारा अवधेश बालेश्वर और उनके साथियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को पूरी प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ मनाया गया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगियों प्रवीण कुमार और कुंवर बहादुर सिंह द्वारा दिया गया ये विवरण।
1: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा,
2: मेरे प्रिय साथियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, वीर शहीदों के परिजनों और भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई।
0: जन भवन में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी ममता उपाध्याय।
3: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन भवन का ऐतिहासिक प्रांगण भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। प्रातः ठीक 9 बजे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का समारोह स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के समूह गान से हुआ और पूरा प्रांगण वंदे मातरम गान से गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहरा उठा। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत 2047 हेतु भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। समारोह के समापन चरण में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सुसज्जित परेड का निरीक्षण कर अभिवादन स्वीकार किया और समारोह का समापन हुआ पुलिस बैंड द्वारा बजाई गई धुन।

0: विधानसभा में मनाए गए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवाशीष और आसिफ इकबाल।
1: 15 अगस्त के इस पावन और प्रमुख दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का त्योहार विधानसभा में भी मनाया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एवं आम जनता ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम के गायन के साथ इसके 150 वर्ष पूर्ण होने को और भी गरिमामयी बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
2: पूरे प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
3: भारत तेरे चरणों में इतिहास बड़ा मुस्काता है, तेरे गौरव का हर पन्ना वीरों की गाथा गाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी वीर बलिदानियों को नमन किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान में समारोह आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के विवरण के साथ ये है आकाशवाणी आगरा का डिस्पैच।
4: 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मोहब्बत के शहर आगरा नगर में भी सुबह से ही देशभक्ति के तराने फिजाओं में गूंज रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय आगरा में ध्वजारोहण किया। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने झंडारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
5: स्वतंत्रता दिवस पर मेरा इतना ही अनुरोध और इतनी ही प्रार्थना कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उन भावों को जो कि हमें प्राप्त हुए, विरासत में प्राप्त हुए हैं, उनको जरूर जिए और अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हमेशा देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने कार्य के प्रति ये भाव रखें कि हमको अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है।
4: पुलिस लाइन में झंडारोहण किया आगरा नगर के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने। तत्पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा,
6: हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज भारत गणराज्य अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। विगत एक सप्ताह से देश की गली गली, प्रत्येक नुक्कड़, प्रत्येक चौराहे पर तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। यह अवसर हम सभी को उत्साहित करने वाला है ही, साथ ही साथ गौरवान्वित करने वाला है।
4: जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण किया आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने। इसके पश्चात उन्होंने वहाँ उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा,
7: आज हमारा देश एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस पूरी सफर में, इस जर्नी में बहुत सारे हमारे देश के वीर सपूतों ने, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे वो हमारे सुरक्षा बलों के जवान हो और अन्य हमारे कई ऐसे वीरों ने इस देश के प्रिंसिपल्स को, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए, इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी

0: न्यौछावर किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को भी बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
1: मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा छावनी में ध्वजारोहण किया मंडलीय रेल प्रबंधक गगन गोयल ने। इसके पश्चात उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
2: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों एवं महापुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आजादी मिली एवं एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
3: आकाशवाणी आगरा के डिस्पैच के बाद अब सुनिए आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच।
4: आजादी के 80 साल संघर्षों का एक लंबा सफर, अनगिनत कुर्बानियां और उन सपनों का भारत जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था, उन्हीं स्मृतियों और नए संकल्पों के साथ देश का ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के भांति जनपद सोनभद्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर घर तिरंगा का संदेश यहाँ जन जन के गौरव और अखंडता के पहचान बनकर उभरा, विशेषकर युवाओं के मध्य। वंदे मातरम के गौरव गान और देशभक्ति के नारों के मध्य जनपद का मुख्य समारोह विशिष्ट तेरा स्टेडियम सोनभद्र में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश श्री संजीव कुमार गौड़ ने ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित गणमान्य को शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
5: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर युवा को रोजगार का अवसर मिल सके, किसान को सम्मान के साथ जीने के, हर नागरिक को सम्मान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करने का काम करेंगे।
4: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र श्री चर्चित गौड़ ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
6: मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और यहाँ पे जितने भी हमारे नागरिक हैं, सोनभद्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब जनपद सोनभद्र के वासी एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र हित में, लोक हित में, प्रदेश हित में और जनपद के हित में सब लोग हम लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे।
4: हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों ने राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस तरह ऊर्जांचल नगरी सोनभद्र में आजादी का जश्न भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ सम्पन्न हुआ।
3: ये था आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच।
7: संपूर्ण देश के साथ जनपद मथुरा में भी 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही विद्यालय के बच्चों के साथ उनके शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरियां निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराकर उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई।
8: हर कार्य में तन मन से सहयोग करूंगा।
7: अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा,
9: जब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को सूत्र वाक्य दिया था कि कर्मण्येवा अधिकारस्तेषु मा पशु कदाचित, उस मिट्टी पर सेवा करना जहाँ के मिट्टी में जन्म लिए हुए ऐसे हम लोगों के आराध्य ने जब ये संदेश दिया था, तो हम कोई कारण नहीं है कि हम अपने जो पूर्वज हैं, हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे हैं, हम लोग जो संवाहक रहे हैं, उनकी बात हम भूले। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी पदेन जिम्मेदारी है कि अपने साथियों से मोटिवेट करते हुए और उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकालूं। इस दिशा में कई बार सुनाना भी पड़ता है और कई बार सुनना भी पड़ता है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के

0: सभी की बिना बताए अगर कोई पीड़ा है तो वो समझ ले।
1: जनपद मथुरा के प्रतिष्ठित संस्थान मथुरा रिफाइनरी में भी 80वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सहस्त्राब्दी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री मुकुल अग्रवाल ने कहा,
2: आज का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह दिन है कृतज्ञता का, स्मरण का, आत्ममंथन का। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, यह हमें सहज रूप से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान था। आजादी का मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाया, जिन्हें यह पता भी नहीं था कि वे स्वतंत्र भारत के लिए, जिसके लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं, वे उसे देख पाएंगे भी या नहीं। उन्होंने अपने आज का बलिदान हमारे कल के लिए किया, इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम उनकी उस कुर्बानी को न केवल याद करें बल्कि उसका सम्मान भी करें।
3: ये था आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच।
4: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज रामनगरी अयोध्या देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, वंदे मातरम और देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा,
5: मेरे हिसाब से हमारे पूरे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है, जिसमें कि सारी बेड़ियों को तोड़ के हमारा देश आजाद हुआ था और बहुत लोगों ने उसमें बलिदान दिया था और एक कल्पना की थी कि हम अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और एक विकसित देश के लिए डेवलप करेंगे। और हम देखेंगे कि सभी लोगों ने किसी न किसी क्षमता में, देश के नागरिकों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया और हम आज इस स्थान पे खड़े हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है।
4: रिजर्व पुलिस लाइंस अयोध्या में तिरंगे को सलामी देने के पश्चात एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई और बहादुर जवानों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
6: इस स्मृति का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत सामाजिक क्षेत्र में नए प्रयासों से समग्र आर्थिक विकास के बल पर वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझता हूँ कि अमृतकाल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे।
4: स्थानीय जीआईसी प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी ने युवाओं को नशे से बचने की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा,
7: यहाँ पे न जाने कितनी व्यवस्थाएं हो गई है, यहाँ पे आज हमारे पूरे प्रदेश, हमारे देश ने मजबूती के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए, हर चीज पे ध्यान देते हुए, तकनीकी के कारण हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हम सब लोग निश्चित तौर पे अगर संकल्प ले दें कि देश को विकसित बनाना है तो हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं।
3: ये था आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच।
8: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बरेली का आसमान गूंज उठा। शहर के मुख्य चौकी चौराहे पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और साथ ही नगरवासियों का आह्वान किया।
9: सर्वप्रथम आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष जिन संस्कारों के लिए जाना गया, जिन संस्कृति के लिए जाना गया, आज अभेद भारत जिसको मुगल भी नहीं झुका पाए, जिसको अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, हमारे संस्कारों संस्कृति को वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पाए, आज उस भरे हुए संस्कारों से ओतप्रोत ये भारतवर्ष है। दोस्तों आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतवर्ष के युवाओं पर टिकी, कि भारतवर्ष का युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लगातार पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं, हम लगातार आर्थिक अर्थव्यवस्था में 4थे और 5वें नंबर पर टिके रहते हैं। अब कोशिश हमारी हो रही है कि

0: आजादी का ये जश्न कलेक्ट्रेट परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। ध्वज फहराने के बाद जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और उल्लास का दिन है। हम उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी लोग मिलकर उनकी यादों को सलाम करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। हमें आज के दिन इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
2: ये था आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच।
3: बादलों की ओट में मुस्कुराता सूरज, सुबह की पहली किरण के साथ सड़कों पर गूंजते बच्चों के जोशीले नारे,
4: भारत माता की जय।
3: मानो प्रकृति भी आज तिरंगे के रंग में रंगकर स्वतंत्रता के इस पावन पर्व का स्वागत कर रही हो। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया रामपुर के जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी ने।
5: सर्वप्रथम आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और बधाई। 79 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और उसके बाद आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा प्रदेश सरकार के और सरकार के निर्देश हैं, जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप सभी से अपेक्षित है कि आप न सिर्फ आप स्वयं बल्कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उन सभी को प्रेरित करें कि आज अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे का महत्व यह है कि हम इसके माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं।
3: आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाने वाली सुबह थी जिसकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी समाधि रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्प्रेरक उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख,
6: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय लिए गौरव की बात है। राष्ट्रधर्म सभी धर्मों में सर्वप्रिय है क्योंकि इसमें जनकल्याण की भावना नियत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्रहित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, गौरव और संयोग रखने के हेतु सदा तत्पर रहें। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत, सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है।
3: आज का दिन गर्व का दिन है, संकल्प का दिन है और मातृभूमि के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। भारत के विकास की नव ऊर्जा का संकल्प अपने मन में समेटे आइए मनाए स्वतंत्रता का ये महापर्व।
2: ये था आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच।
7: स्वतंत्रता की अलख जगाने के साथ साथ आजाद भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली रही वाराणसी ने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ देशभक्ति, श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई। भगवान भोलेनाथ को प्रिय पवित्र श्रावण मास में आजादी के पावन पर्व के अवसर पर आज हर ओर संस्कृति के चटक और भाव भरे रंगों का अप्रतिम समावेश देखते ही बनता था। मुख्य समारोह ऐतिहासिक वाराणसी कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जहां वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा,
8: देखिए आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, बनारस के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा साथी हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस आजादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने बहुत बलिदानियां दी हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों को अपना अपना योगदान देना है।
7: वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने विशेष उपलब्धियों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और देश की एकता और संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने कहा,
9: इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी बात की चिंता करे अपने जीवन को हमारे देश को आजाद कराने के लिए निछावर कर दिया। जिस तरह का

0: सपना उन्होंने स्वतंत्र भारत का देखा था, हमको उन सपनों को साकार करना।
1: सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित भव्य स्वाधीनता दिवस समारोह में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा,
2: स्वाधीनता संग्राम केवल एक संग्राम नहीं था, स्वाधीनता संग्राम ने हमको बहुत सारी अक्षुण्ण चीजें प्रदान की हैं। सबसे पहली चीज जो हमको मिली है, एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान। आज के दिन हमको ये याद रखना चाहिए, कई बार हम अपनी भारतीयता को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस भारतीयता को पीछे छोड़ देते हैं। आज का दिन है जब हम इसको पुनः स्मरण करते हैं कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं।
1: राष्ट्रीय उत्सव के उल्लास की अलौकिक छवि बाबा विश्वनाथ धाम में भी दिखी। इस अवसर पर बाबा का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूल और पत्तियों से की गई भगवान श्री विश्वनाथ और पवित्र धाम की साज सज्जा लोग अपलक निहारते रहे। शैक्षणिक संस्थानों में इस मौके पर खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच।
4: जनपद प्रयागराज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर का मुख्य आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज पीयूष मोडिया ने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
5: जब 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमने पाई, उस स्वतंत्रता के पाने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ।
4: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
6: इस देश का तिरंगा आज अपने आन बान और शान से नीले आसमान पर लहरा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सदैव लहराता रहे। इसी तरह हमारी ऐसी मनोकामना है। इस झंडे का लहराना महज लहराना नहीं है, अपितु इस बात का संकेत है कि हम एक स्वाभिमानी देश है और स्वतंत्र देश है, और हमारी स्वतंत्रता वो है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया।
4: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुबेदारगंज स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
7: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आजादी मिली और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
4: इफ्को फूलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। परिसर में आयोजित समारोह में इफ्को के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
8: इस दिन को मेरी ओर से और पूरे इफ्को यूनिट के सभी कर्मचारी, बंधु, बहने और अधिकारी की ओर से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज सिर्फ स्वतंत्र दिन पे इफ्को फूलपुर यूनिट और देश के अन्य भाग में आए हुए इफ्को के यूनिट के द्वारा देश की समृद्धि, सलामती, स्वास्थ्यता, सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध।
3: ये था आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच।
9: आज 15 अगस्त है, आजादी का पावन पर्व, गौरव का प्रतीक और हमारे सपनों का दिन। आज झांसी कलेक्ट्रेट सभागार से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे की छांव में खड़ा पूरा झांसी शहर और गांव एवं झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से गूंजते आजादी के तराने, आज पूरा देश उत्सव में डूबा है। आइए महसूस करें इस ऐतिहासिक सुबह की जीवंत ऊर्जा को। सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं झांसी महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय श्री गौरांग राठी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सूरज प्रसाद वालिका इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया एवं

0: सभागार में देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। अब जिला कलेक्ट्रेट सभागार से जिलाधिकारी महोदय अपने उद्बोधन के साथ।
1: आज हम पूरे देश में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की थीम है। इनफैक्ट इस बार इस थीम के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला है वंदे मातरम के 150 वर्ष जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की महत्ता।
0: श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर जहां से 1857 में उद्घोष हुआ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया और साथ ही शांति के प्रतीक सफेद कबूतर खुले आसमान में छोड़े गए। झांसी दुर्ग की प्राचीर से जिलाधिकारी महोदय अपने विचारों के साथ।
1: सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य भूमि कर्मभूमि से झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह किला केवल पत्थरों और प्राचीरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संकल्प का प्रतीक है।
2: ये था आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच।
3: दिवस पर्यंत आज अनेक आयोजन हुए। मुख्य समारोह प्रातः 8 बजे ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जहां कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज के महत्वपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा,
4: विगत 79 वर्षों में देश ने अपना एक तंत्र तैयार किया है जो डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और इसी के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने 1857 में भी और 1947 तक अपनी जान दी, तकलीफें झेली, जेल में रहे। इसका भारत में भारतीयों का शासन हो, जो अकाउंटेबिलिटी हो, जो जवाबदेही हो, हम अपने प्रतिनिधि चुन सके, अपने देश को ऐसा संचालित कर सके कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो भारत के मूल्य हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, उस सबको हम उस तरह से पोषित कर सके, संचालित कर सके, जैसा कि भारतीय चाहते हैं।
3: अगले पड़ाव में हम पहुंचे कानपुर पुलिस लाइन। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
5: आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस हमें हमारे अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, अपने तप के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से ये आजादी हमें दी है, ये आज हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, अक्षुण्य बना के रखें।
2: ये था आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच।
6: श्रोताओं, अपने राष्ट्रीय पर्वों को हम सब सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला बिजनौर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम गीत के बाद माननीय जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस पावन अवसर पर जिलाधिकारी जसजीत कौर और अपर जिलाधिकारी FR श्री देवेंद्र पाल के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस यादगार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बिजनौर श्रीमती जसजीत कौर ने आजादी के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया।
7: इंडिपेंडेंस डे है आज, और इतने लंबे समय से 79 ईयर्स हो गए हमारी आजादी को, जिसमें हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, हमारे बच्चे, हम लोग हर बार पे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ओपनली अपनी इच्छा ग्रहण करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत आसानी से ये जो हमें चॉइस का अधिकार मिला है, वो बहुत खुशी से मिला है। बहुत लंबे समय तक आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चला है, बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत हर वर्ग के लोग जुड़े।
6: इस पावन अवसर पर बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद मुख्यालय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नगर के सैकड़ों आम व खास व्यक्ति मौजूद रहे। सवेरे 8 बजे ही माननीय उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आप हैं उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह।
8: मैं नगर वासियों को, तहसील वासियों को और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के और संपूर्ण विश्व में भारतवंशी जहां भी फैले हैं, सबको मैं

0: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
1: ये था आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच। आकाशवाणी नजीबाबाद के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी गोरखपुर का डिस्पैच।
2: आज 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गोरखपुर भी पूरी तरह देशभक्ति, उल्लास और राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंगा नजर आया। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और श्री मीणा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण और शपथ के बाद जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
3: सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये एक दिन है जिस दिन हम जितने भी हमारे जो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए या जो हम खुली हवा में सांस ले पाए उसके लिए अपनी जो आहुति दी है, अपना जो परिश्रम दिया है, उन सबको एक याद करने का दिन है।
2: अब रुख करते हैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवड़कर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियों, रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
4: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इंगित करूंगा। बहराइच नेपालगंज रोड खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे पूर्ण रूप से बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है।
2: अब चलते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
5: आज हम इस आंदोलन में एकत्र होकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं। यह केवल एक स्थापित परंपरा का निर्वहन या औपचारिक मात्र नहीं है। ये सूर्योदय उन अनाम, अमर, निष्काम क्रांतिवीरों को प्रति हमारी आत्मा की असीम कृतज्ञता प्रकट करने का क्षण है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने यौवन और अपनी अंतिम श्वासों की आहुति देकर हमें इस आजाद फिजा में सांस लेने का अवसर दिया।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये है आकाशवाणी अल्मोड़ा का डिस्पैच।
6: सावन के बरसते बादल और पर्वतों को ओढ़े कोहरे के बीच सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा ने 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह ने ध्वजारोहण किया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप हैं जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह।
7: भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा ये 80th इंडिपेंडेंस डे है। 79 इयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो गए हैं। ये दिन इसलिए जरूरी होता है कि हमें रियलाइज हो कि जो हम देश आजाद हुआ था इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था और उसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्मोड़ा जनपद में हम स्वच्छता के लिए एक काम करेंगे। जो अधिकारीगण है वो अपने स्तर से काम करेंगे और जो सिटीजन है वो अपने स्तर से काम करेंगे, जो मीडिया है वो अपने स्तर से काम करेगी, जो हमारे लॉयर्स हैं वो अपने स्तर से काम करेंगे और हर क्षण हम ये कोशिश करेंगे हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रख सकें। यदि कोई कूड़ा फेंक रहा है तो उसको जाके प्यार से समझाए कि बंधु ये सही तरीका नहीं है, इसको या तो अभी अपनी जेब में रख लो और आगे अगर बगल में डस्टबिन है तो उसमें डाल दो। समय लगेगा लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर हम सब लोग पहल करेंगे तो एक एक करके हम लोग इस चीज को सुधार में ले आएंगे।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच।
8: राष्ट्र ने आज अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में स्वाधीनता का ये उत्सव परंपरागत तरीके से उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोकभवन उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा,
9: अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आजादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है, उन पर हमको गर्व है।
8: स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह

0: ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
1: मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
0: पुलिस महिला बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।
2: ये था आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच।
3: श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 7 बजे विरत तौर पर प्रभात फेरियां स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई और इसके पश्चात प्रातः के 9 बजे विकास भवन परिसर पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्रोताओं, 15 अगस्त 2026 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रेक्षागृह संस्कृति भवन पौड़ी में आयोजित किए गए, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवा जीवित पत्नी तथा शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने अपने उद्बोधन में कहा,
4: स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता हमें बड़े संघर्षों से रही, ये स्वतंत्रता हमारे लाखों नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपने प्राणों को नौ अपना घर बीमार व्यापार सब कुछ छोड़कर हम ये स्वतंत्रता है।
3: श्रोताओं, इस अवसर पर जनपद के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: ये था आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखेंगे, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और वीर शहीदों के बलिदान से परिचित कराएंगे। चलो उठो, संकल्प करें हम, भारत का सम्मान रहे, जब तक नभ में सूर्य चमकता तिरंगा ऊंचा शान रहे, अतीत हमारा दीप बने, भविष्य हमारा पथ बने, भारत फिर ऐसा भारत हो जिस पर हर युग को गर्व रहे। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। वाचन और संपादन सहयोग था सुरेंद्र राजेश्वरी का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा

0: प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को

वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष
अभिलेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी

अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के एक आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाले रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयक को पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता

0: जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: प्रस्तुत है समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत

उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।